मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है मंगल ध्वनि के साथ।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि

0: पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में 3रे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। प्रस्तुत है आज का विचार आचरण पर, वाचक स्वर हैं श्री अगरचंद नाहटा के।
3: प्रत्येक मानव चाहता है कि उसे यश और सम्मान मिले, पर जिन कार्यों से सम्मान मिलता है उन्हें वह करने को तैयार नहीं होता, प्रयत्न नहीं करता। यह तो निश्चित है कि कोई भी बात केवल चाहने से ही नहीं मिल जाती। चाहने वाले तो उसके लिए योग्यता भी प्राप्त करनी होती है, प्रयास भी करना होता है। सम्मान प्राप्त करने का सुगम उपाय है कि हम भी दूसरों का सम्मान करें। साधारणतया लोग अपना सम्मान तो करवाना चाहते हैं, पर दूसरों का सम्मान

0: चयन नहीं करते, तो बताइए आप अपनी ऐंठ में रहेंगे तो दूसरे को सम्मान कैसे पा सकेंगे? आपको घमंडी समझेंगे और उस दोस्त को महत्व दे देंगे, फिर वे आपका सम्मान क्यों करेंगे? लोक व्यवहार में भी यह प्रसिद्ध है कि साथ दे और वो साथ ले। हम किसी को देंगे नहीं तो दूसरे हमें क्यों देने लगेंगे? हाँ, आंठी बांटी का भी बराबर का नाता होता है। कहावत है, रख पथ रखाए पथ। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा तो आप भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करेंगे। सम्मान प्राप्त करने का एक और सुगम उपाय है कि अपने में गुणों का विकास करते जाएं। हमें ये देखना होगा कि जो व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है उसमें ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे वह सम्मान पा रहा है। वैसे कोई व्यक्ति सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है या गाने बजाने में निपुण होता है तो फिर पढ़ने लिखने में होशियार है, ऐसे व्यक्ति समाज में सहज ही सम्मान पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण व अवगुण होते ही हैं, पर साधारण गुण होने से सम्मान प्राप्त करने योग्य विशेषता प्राप्त नहीं हो सकेगी। यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए एवं किसी भी अच्छे गुण का समुचित विकास करना आवश्यक होगा। दूसरों की अपेक्षा जहाँ तक आपके गुणों का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक तो सर्वसाधारण के समान ही आपकी स्थिति रहेगी। उस स्थिति में आप सम्मान प्राप्त करना चाहें तो संभव नहीं होगा। इसलिए विशेषताएँ चाहे थोड़ी ही हो पर होनी ऐसी चाहिए कि दूसरों की अपेक्षा काफ़ी अच्छे स्तर की हों। जैसे लाखों विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं पर उनमें से सबसे अधिक नंबर लाता है उन्हीं विद्यार्थियों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। जैसे कि महात्मा भर्तृहरि ने कहा है, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, अर्थात गुणीजनों की पूजा गुण से होती है, उनके वेश या उम्र से नहीं। अतः गुणों का विकास अधिकाधिक उच्च स्तर का करिए एवं दूसरों को उचित सम्मान देते रहिए तो आपको बिना मांगे भी सम्मान अवश्य मिलेगा।
1: आचरण पर अभी आपने सुना आज का विचार, वाचक स्वर से श्री अगरचंद नाहटा के। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। कार्यक्रम में आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 256 से दोहा संख्या 258 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। गायक कलाकार है अनुराधा पोडवाल, संगीतकार सतीश भाटिया।
1: एपिसोड नंबर 94।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचानकर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है, तो वे मुझे

अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।

चंद्रमा दिवस, विज्ञान में महिलाओं के बढ़ते कदम, मानसिक एकाग्रता के लिए शतरंज, विश्व शतरंज दिवस, दिल की सेहत, नर्सरी मैनेजमेंट और फूलों से सजाए बगिया। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार श्रीमती पूनम गर्ग की वार्ता, विषय बुद्ध के संदेशों की जीवन में प्रासंगिकता।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा पुस्तकों से दोस्ती। लघु जानकारी के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, आत्मविश्वास से सफलता, पीएच स्केल, आरपीएससी।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा पुस्तकों से दोस्ती। लघु जानकारी के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, आत्मविश्वास से सफलता, पीएच स्केल, आरपीएससी।

शाम 7 बजे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, जल है तो कल है, श्रमयोगी मानधन योजना, पारंपरिक खेलों से संपूर्ण शारीरिक विकास।

सुबह 8:30 पर हमारी इसी सभा में सौरभ कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक की वार्ता, विषय महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT और दिन के 12:10 पर आप सुनेंगे नाटक गोरख धंधा शीर्षक पर, लेखक असद अली असद।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 10 बजे दिन के 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8:15 पर और पुरानी फिल्मों से गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

0: ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें, मानसून में पशुओं का रखे ध्यान विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री बजरंग सारस्वत।
1: राम राम सा। बरसात रे नाम सुई एक फूट रिसी, मन भावन मौसम री कल्पना हो जावे। भला एड़ो कुण है जिके ने बिरखा पसंद कोनी, मिनक होवे या पशु, बिरखा सगड़ा ने अच्छी लागे। खास बात आ है के बिरखा है जकी मौसम रे अनुसार ही होनी चाहिए और जरूरत सु बत्ती नहीं होनी चाहिए, नहीं जड़े नुकसान भी हो सके है। मिनक तो मिनक, फिर भी जिया तिया अरे दुष्प्रभाव सु बच जावे, पर पालतू पशु तो चपेट में आ ही जावे। इर वास्ते वो जरूरी हो जावे के पशुपालक भाई बिरखा में या मानसून सु पहली सावधानी राख रहा अपने पशुआ ने तमाम खतरा सु बचावे और वारी सेवारो भरपूर लाभ लेवे। अपारी गाय, अपारा बड़द, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, जिका भी अपारा पालतू पशु है बारो विशेष ध्यान रखो। ई मौसम में बीमार पशु सु माटी और पानी भी संक्रमित हो जावे, जिकेरे संपर्क में आने सु स्वस्थ पशु भी संक्रमित हो जावे, एड़ो खतरो हमेशा बनोड़ो रहे। इर वास्ते बीमार पशु ने दूजा स्वस्थ पशु

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, विज्ञान अपने आप में बहुत अत्यधिक महत्व रखता है। इस विज्ञान के दम पर ही हम आपसे हर सुबह 7 बजे सुप्रभात कार्यक्रम में कनेक्ट हो जाते हैं। विज्ञान ने हमेशा मानव जीवन को सरल बनाया है, सुगम बनाया है, मानव जीवन को गति दी है।

विज्ञान ने। विज्ञान का हमारे सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक के पूरे दिन भर की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण और अहम योगदान है। चाय में डलने वाली चीनी से लेकर रात को सोते समय जो हम अलार्म फिक्स करते हैं, यह सब विज्ञान की वजह से ही संभव हुआ। साइंस का विज्ञान का अपने आप में बहुत योगदान है। विज्ञान में नित नए नए आविष्कार होते रहते हैं ताकि मानव जीवन को और सरल बनाया जा सके, और सुगम बनाया जा सके, और सुविधाजनक बनाया जा सके। साइंस अपने आप में वरदान है। कहीं कहीं यह हमारे धर्म में जबरदस्ती समावेशित अंधविश्वास को खत्म करता है और तार्किक बात करता है। और कहा भी गया है कि जिस भी धर्म का हम पालन करते हैं, वह धर्म अगर साइंस से जुड़ा हुआ है, उसमें साइंस का कनेक्शन है, तब तक तो वह सही है। लेकिन अगर ऐसी कोई धार्मिक मान्यता जिसमें साइंस का कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब वह अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, मिथ है। ऐसी बातों को हमें मानना नहीं चाहिए। साइंस ने बहुत सी चीज़ों की पहेलियों को बुझाया है। मानव जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जब से मदर नेचर का निर्माण हुआ, जिसको मनुष्य ने अचंभे से, हैरानी से देखा, लेकिन साइंस ने उसकी खोज करके, उस पर रिसर्च करके, उस आश्चर्य के पीछे छुपे सत्य को उजागर किया। आज हम धरती से चंद्रमा को देखते हैं। पूर्णिमा के वक्त वह कंप्लीट मून दिखाई देता है और पूरी रोशनी देने वाला होता है। अमावस्या के दिन वह गायब हो जाता है, चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। इस चीज़ के पीछे जो हमारी अर्थ का मूवमेंट है, हमारे उपग्रह चंद्रमा का जो मूवमेंट है, उसको साइंस ने खोज निकाला और तब पता चला कि चंद्रमा धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है और धरती जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा का धरती के चारों ओर एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है, वह लगभग 29 डेज के आसपास होता है। यह सब चीज़ें जो हमें बतलाई, वह साइंस ने बतलाई। और आज साइंस अंतरिक्ष में इतना आगे बढ़ गया है कि वह हर एक प्लैनेट और उस प्लैनेट के उपग्रहों की जानकारी हमें देता है। हर प्लैनेट पर किस तरह के मिनरल्स हो सकते हैं और किस तरह का जीवन होने की संभावना है, यह ढूंढ रहा है साइंस। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के माध्यम से हर दिन कोई ना कोई नया रिसर्च उस स्टेशन पे किया जाता है और उसकी अपडेट धरती तक पहुंचाई जाती है। अपने आप में मनुष्य जीवन हमेशा जो है जिज्ञासु रहा है। समुद्र की गहराइयों में हमने रिसर्च करी है, खोज करी है, तो वहीं अंतरिक्ष की गहराइयों में भी हम निरंतर खोज कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनके मूवमेंट्स के साथ साथ उनमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जा सकते हैं या पाए जाने की संपूर्ण संभावना है, यह भी हमने आज खोज निकाला है। और न जाने कितने सैटेलाइट जो कि मानव निर्मित हैं, आज धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जो मौसम की गणना से लेकर के कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की भी एक निश्चित गणना देते हैं और हमें ऐसी आपदाओं के बारे में पहले से ही सचेत कर हमें सतर्क कर देते हैं। और सारा खेल सूचनाओं का है श्रोताओं। सूचना और अपडेट्स जितनी आपके पास में होगी, आप उतना ही अपने भविष्य में सुरक्षित रूप से लीड कर सकते हैं। आज का दिन श्रोताओं 20 जुलाई है और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हर एक दिन का अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर एक दिन एक नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। जो बीत गया सो बीत गया, हमें परवाह करनी है आज की और अभी की। अगर हमारा आज अच्छा है तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। इसी कोशिश में हर एक दिन को एक पॉजिटिविटी के साथ में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आज के दिन का हर एक क्षण जो है हम बैलेंस्ड रूप में यूटिलाइज करेंगे और नई कोशिश

नए परिणामों को नए आयाम देंगे। आज श्रोताओं 20 जुलाई है और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के अन्वेषण, विज्ञान और मानवता के लिए इसके महत्व के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस की घोषणा की थी। 20 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 20 जुलाई 1969 को ही अपोलो 11 मिशन के तहत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे और चंद्रयान मिशन के द्वारा आज भारत देश भी चंद्रमा के ऊपर नई खोज कर रहा है और चंद्रमा की वो सतह जिसे कभी देखा ही नहीं गया है मानव सभ्यता के द्वारा, वहाँ पर भी चंद्रयान को उतारे जाने की कोशिश की गई है और उस सरफेस पर नई खोज के लिए साइंस लगातार नई रिसर्च कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है और न जाने कितनी रिसर्च आज भी अंतरिक्ष की गहराइयों में अंतरिक्ष के सच को जानने में लगी हुई है। अगर हम बात करें चंद्रमा की श्रोताओं, तो ज्योतिषीय महत्व में चंद्रमा का जो संबंध है वह सीधा हमारी मदर से होता है, माता से जुड़ा हुआ होता है, हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन जो है सदैव निर्मल रहे, अच्छे विचारों वाला रहे, तो आपके माता से, आपकी मदर से संबंध अच्छे होने चाहिए, ऐसा ज्योतिषी गणनाओं में बतलाया गया है। तो आज के दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के दिन अपने मदर के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद जरूर लें और हमारे मदर फादर, हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, जब जब भी हम उनसे चरण स्पर्श करते हैं तो ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि एक एनर्जी हम उनके चरणों से लेते हैं और वह ऊर्जा हमें जीवन जीने की ऊर्जा देने के साथ साथ सकारात्मकता बनाए रखती है और हमारे मन को पॉजिटिव विचारों के साथ में सदैव जितने भी मानसिक विकार हैं, मन के जो विकार हैं, उनसे दूर बनाए रखती है। सदैव कोशिश करें कि हम हमारे गार्जियंस का, हमारे माता पिता का सम्मान करेंगे और चाहे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, सबसे पहले हम उनके भोजन, उनकी मेडिसिन और उनकी अवस्था को ध्यान में रखते हुए उनकी बात को महत्व जरूर देंगे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। जब

0: बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, हमारा भारत देश मुख्यतः गांवों में बसता है और गांवों का जो कल्चर है वह अपनी एक अद्भुत और एक अलग विशेषता रखता है। जिस गांव में जिस तरह का पशुधन होगा, जिस तरह की फसलों की उपज होगी, उस गांव में उसी तरह का पहनावा होगा, उसी तरह का खान पान होगा, उसी तरह की भाषा होगी। और वहां के जो कलाओं की बात करें तो वहाँ की एक अलग ही लोक कला होगी। लोकगीत, लोक कला उस जगह विशेष की भौगोलिक विशेषताओं को समावेशित करते हुए एक अपनी अद्भुत लेकिन बहुत ही मनोरंजक और विशेषताओं वाली संस्कृति से भरा हुआ होता है एक गांव। भारत देश के कोने कोने में कई गांव हैं, हजारों गांव हैं, और वे गांव वहां की भौगोलिक विशेषताओं के साथ में अलग तरह की लोक संस्कृति, लोक कला को निभाते हैं और उसको सहेज कर रखते हैं अपनी लोक गीतों के माध्यम से, अपनी लोक रचनाओं के माध्यम से और अपने साहित्यों में। इन लोक कलाओं का अत्यधिक महत्व होता है। यह मानव सभ्यता की विशेषताओं, उनके इतिहास और निरंतर मानव की प्रोग्रेस, मानव की प्रगति के जो आयाम होते हैं, उन कदमों की विशेषताओं को समावेशित करते हुए लोक कला सालों से, वर्षों से, सदियों से चलती आ रही होती है। ऐसे में इन लोक कलाओं का, लोक संस्कृति का विशेष महत्व होता है। इस कल्चर की वजह से ही हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। किसी एक अन्य भौगोलिक विशेषता वाला पशु या वहां का खान पान, किसी अन्य भौगोलिक विशेषताओं वाले परिवेश में सूट नहीं करता है और वह सर्वाइव भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वह अपने आप को उसके अनुकूल नहीं बना पाता। ऐसे में ये लोक कलाएं होती है, लोक संस्कृतियां ही होती है जो हमें यह बतलाती है कि हमें उस एक जगह पर अपने आप को कैसे बैलेंस्ड रखना है और अपने आप को वहाँ ढालना है। इसलिए हमारे यहाँ तो यह भी कहा गया है कि जैसा देश वैसा भेष, और खान पान भी हमें वहाँ का ही अपनाना होता है। अदरवाइज हम चूंकि जल्दी से अनुकूल नहीं हो पाते चीज़ों के, परिस्थितियों के, तो वह कहीं ना कहीं हमारे लिए संकट उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का जन्मदाता भी बन जाता है। ऐसे में हमें लोक संस्कृति को हमेशा सहेज कर रखना होता है और कोशिश करनी होती है कि हम लोक संस्कृतियों की विशेषताओं को और अत्यधिक गंभीरता से ले और उन्हें सहज कर रखें।

श्रोताओं, जिस तरह से रेडियो आपसे तय समय पर कनेक्ट होता है, हम अपने विभिन्न प्रोग्रामों को तय समय पर, फिक्स समय पर आपके साथ में साझा करते हैं, ठीक उसी तरीके से ईश्वर ने भी हम जीव जंतुओं में, मनुष्यों में एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स करी है। तय समय पर हमें नींद आती है, तय समय पर हमें भूख लगती है और तय समय पर हम हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों को संपूर्ण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह बायोलॉजिकल क्लॉक हम इंसानों से लेकर पशु पक्षियों में, जानवरों तक में भी फिक्स्ड होती हैं। कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो निशाचर होते हैं, वे सिर्फ रात को ही देख पाते हैं, वे सिर्फ रात को ही भोजन करते हैं, वे सिर्फ रात को ही जगते हैं, दिन में वे सोते रहते हैं या फिर उनको दिन में दिखाई नहीं देता। कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिनको, जो सूर्यास्त के बाद में बिल्कुल भी एक दाना भी नहीं चुगते हैं, खाना नहीं खाते हैं, वे सूर्यास्त होने के साथ में भोजन छोड़ देते हैं और अपने अपने घोंसलों में जाके, अपने अपने घरौंदों में जाकर रहने लगते हैं। एक बायोलॉजिकल क्लॉक से हम चल रहे होते हैं, लेकिन इस बायोलॉजिकल क्लॉक में अगर कोई चीज़ डिस्टर्बेंस पैदा करती है तो वह है ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ श्रोताओं, नॉइज पॉल्यूशन की वजह से हम मनुष्य में अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट या फिर ऐसी नींद जो बार बार टूटती है की शिकायत होती है, तो वहीं पशु पक्षियों में ध्वनि प्रदूषण की वजह से संवाद आपस में, वो जो चहचहा कर अपनी भाषा में जो बात करते हैं, वह संवाद शून्यता पैदा हो जाती है। एक पक्षी दूसरे पक्षी से सही रूप में कनेक्ट नहीं हो पाता। इस कनेक्टिविटी की वजह से कई बार ऐसे पशु पक्षी आपस में बिछड़ जाते हैं, उनके घर परिवार उजड़ जाते हैं और असमय मौत का ग्रास बन जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम ध्वनि प्रदूषण न करें। वे सभी चीज़ें जिनसे नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, या तो उस इंस्ट्रूमेंट, उस डिवाइस को हम सही करवा लें, या फिर तय लिमिट से ज़्यादा आवाज़ पर उस डिवाइस का, उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करेंगे। तब जाकर के हम हमारी मदर नेचर, पशु पक्षी और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को व्यवस्थित रख पाएंगे। और अब हमारे स्टूडियो की क्लॉक हमें कह रही है कि हमें आपसे कार्यक्रम में लेनी होगी इजाज़त। तो दीजिए इजाज़त कार्यक्रम सुप्रभात में। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है बर्दाश्त। स्वर है उदित नारायण का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

जुदाई फिल्म से अभी आपने गीत सुना, स्वर थे हरिहरन, अलका याग्निक और जसविंदर नरूला के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है निर्जा, स्वर है कविता सेठ का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: क्या आप परेशानियों से कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
3: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है।

0: रमेश, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है।
1: गोयल,
3: आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमेरिका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल

0: हुर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: ovi.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है, शीर्षक दिया है वैज्ञानिकों को बधाई।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened a lawn party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for

0: प्रस्तुत है सौरभ कार्यक्रम में। वार्ताकार डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक की वार्ता, विषय है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास।
1: भारतवर्ष के महान देश में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी एक अपरिचित नाम नहीं है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव, जो आजकल बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में है, वहां हुआ और ये भक्त शिरोमणि के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए। हम सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाकवि के साथ साथ महान संत व्यक्तित्व थे और उनकी अमर कृति रामचरितमानस हिंदी का महाकाव्य है और भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस कृति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इनका जन्म संवत 1554 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हुआ और इनका बचपन का नाम था वो राम बोला इनको कहा जाता था। बचपन इनका बहुत अभाव में गुजरा था और ये गांव-गांव घूमते थे। भगवान की प्रेरणा से श्री नरहरियानंद, एक नरहरि बाबा के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने तुलसीदास जी को अपने साथ लिया और इसके बाद इनका जीवन बिल्कुल बदल गया। बचपन में तुलसीदास जी में एक बहुत अच्छा गुण था और उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। जो एक बार वो सुन लेते थे वो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ।

और उसके बाद ये रामकथा सुनाने का कार्य करने लगे। रामकथा सुनाते सुनाते इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद इनका रचना संसार प्रारंभ होता है। 1628 संवत में वे पुनः भ्रमण के लिए निकल पड़े और देशाटन करते करते इनको एक दिन भगवत प्रेरणा हुई और इन्होंने 1631 में रामनवमी के दिन रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की। यह विश्वविख्यात मानस भारत की एक अमूल्य कृति है और इसी ने इनको महाकवि की उपाधि दी। तो रामचरित मानस लिखने के बाद जो उस समय अन्य लेखक हुआ करते थे उन्होंने इनकी रामचरित मानस को स्वीकार नहीं किया और आपस में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। इससे दुखी होकर इन्होंने काशी छोड़ दिया और पुनः अयोध्या आकर रहने लगे और अयोध्या में ही अपना बाकी का जीवन इन्होंने समर्पित करते हुए अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका इन्होंने लिखी और 1680 संवत में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तुलसीदास जी की आयु के विषय में मतैक्य नहीं है, लेकिन लगभग 126 वर्ष तक वो जीवित रहे और इस जीवन काल में तुलसीदास जी ने रामचरित मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों का सृजन किया और इन कृतियों के बारे में किसी कवि ने लिखा है, पश्य देवश्य काव्यम न मृणोति न जीर्यति, अर्थात देव पुरुषों का काव्य देखिए जो न मरता है न पुराना होता है। लगभग 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों की रचना की थी। आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास जी का काव्य जन जन तक पहुंचा था। यह उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानस जैसे वृहद ग्रंथ को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी अपनी सुचिता एवं ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। रामचरित मानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा। उन्होंने अपनी रचनाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इनके ग्रंथों की एक सूची प्रकाशित की गई है। उसमें इनके प्रमुख ग्रंथों में रामचरित मानस, रामलला नहुच, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, रामश्लाका, संकट मोचन, कारखा रामायण, रोला रामायण, झूलना, छप्पे रामायण, कवित्त रामायण, कलिधर्माधर्म निरूपण और हनुमान चालीसा। प्रसिद्ध ग्रियशन जो कवि रहे हैं उनके द्वारा लिखित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में भी उन्होंने तुलसीदास जी के प्रथम 12 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की मैं यहाँ वर्णन करना चाहता हूँ। इस रचना की काव्यात पहली रचना है पार्वती मंगल। इस रचना की काव्यात्मक प्रौढ़ता तुलसी सिद्धांत के अनुकूल है। कविता सरल, सुबोध, रोचक और सरस है। जगत मातु पितु शंभु भवानी की श्रृंगारिक चेष्टाओं का तनिक भी पुट नहीं। लोक रीति इतनी यथास्थिति से चित्रित हुई है। यह संस्कृत के शिव काव्य से कम प्रभावित और तुलसी की मति भक्त्यात्मक भूमि का पर विचरित कथा काव्य है। व्यवहारों की सुष्टता, प्रेम की अनन्यता और वैवाहिक कार्यक्रम की सरसता को बड़ी सावधानी से कवि ने इसमें अंकित किया है। तुलसीदास जी अपनी इस रचना से अत्यंत संतुष्ट थे, इसलिए इस अनासक्त भक्त ने केवल एक बार अपनी मति की सराहना की। प्रेम पाठ पट डोरी गोरी हर गुण मनी, मंगल हार रचेव कवि मति मृग लोचनी। उनकी दूसरी एक कृति है जानकी मंगल। विद्वानों ने इसे तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं में स्थान दिया है। उसमें लिखा है उन्होंने, पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आँख देखाए कोप दारुण किए, राम कीन परितोष रोष रिस परिहारी, चले सौंपिसा रंग सुफल लोचन करी, रघुवर भुजबल देख उछाह बरातिन, मुदित राव लखि सन्मुख विधि सब भातिन। यह प्रसंग श्री राम जी के द्वारा दिव्य धनुष को तोड़ने के बाद महर्षि
परशुनाथ जी जब वहां

0: आए तो उनके द्वारा और राम जी के बीच जो वार्तालाप हुई, ये उसका बहुत ही सुंदर प्रसंग जानकी मंगल में इन्होंने दिया है। तुलसी के मानस के पूर्व वाल्मीकि रामायण की कथा ही लोक प्रचलित थी। काशी के पंडितों से मानस को लेकर तुलसीदास का मतभेद और मानस की प्रति पर विश्वनाथ के हस्ताक्षर संबंधी जनश्रुति प्रसिद्ध है। एक अन्य इनकी कृति दोहावली, दोहावली बहुत ही प्रसिद्ध कृतियों में मानी जाती है। दोहावली में कवि ने चातक के व्याज से दोहों की एक लंबी श्रृंखला लिखकर भक्ति और प्रेम की व्याख्या की है। दोहावली दोहा संकलन है। मानस के भी कुछ कथा निरपेक्ष दोहों को इसमें स्थान है। संभव है कुछ दोहे इसमें भी प्रक्षिप्त हों, पर रचना की अप्रामाणिकता असंदिग्ध है। उनकी दूसरी एक रचना गीतावली, गीतावली में गीतों का आधार विविध कांड का रामचरित ही रहा है। यह ग्रंथ रामचरितमानस की तरह व्यापक जन संपर्क में कम गया प्रतीत होता है, इसलिए इन गीतों में परिवर्धन दृष्टिगत नहीं होता। गीतावली में गीतों के कथा संदर्भ तुलसी की मति के अनुरूप ही है। एक अन्य कृति हनुमान बाहुक, यह गोस्वामी जी की हनुमत भक्ति संबंधी रचना है, पर यह एक स्वतंत्र रचना है। इसके सभी अंश प्रामाणिक प्रतीत होते हैं। एक अन्य रचना हनुमान चालीसा, जिसको घर घर में आज भी लाखों लोग प्रतिदिन गाते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं उस महान संत शिरोमणि तुलसीदास जी के लिए कह सकता हूँ कि उनको राम प्यारे थे, राम की कथा प्यारी थी, राम का रूप प्यारा था और राम का स्वरूप प्यारा था। उनकी बुद्धि, राग, कल्पना और भावुकता पर राम की मर्यादा और लीला का आधिपत्य था। उनकी आँखों में राम की छवि बसती थी। सब कुछ राम की पावन लीला में व्यक्त हुआ है, जो राम काव्य की परंपरा की उच्चतम उपलब्धि है तथा निर्दिष्ट ग्रंथों में इसका एक रस प्रतिबिंब है।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास विषय पर। वार्ताकार थे डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की उद्घोषणा तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: तरंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं माधुरी वशिष्ठ
2: और मैं रितिका गुप्ता
1: आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है सप्ताह भर की सुर्खियां।
2: राजस्थान विधानसभा स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने शिरकत की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित राज्य के 8 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया।
2: जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन।
1: गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए प्रदेश भर में सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया।
2: राज्य का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू।
1: जुलाई माह अंगदान जागरूकता महीने के रूप में मनाया जा रहा है।
2: राज्य के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग लैब बनाई जाएगी।
1: विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया।
2: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम रखा गया। विधानसभा परिसर में हुए कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन शामिल हुए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ काम करने का आह्वान किया। समापन सत्र को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु सभी का मूल उद्देश्य जनता की भलाई और प्रदेश का विकास है।
3: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभवों और अपनी जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहाँ विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है। यही लोकतंत्र की

0: भी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का पंजाब के जालंधर कैंट से वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल हैं। इन स्टेशनों पर आयोजित कार्यक्रम से स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग जुड़े। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम से राष्ट्रीय लोकार्पण समारोह से जुड़े। इस मौके पर श्री शर्मा ने इसे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है उस संकल्प के साथ गति देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
1: जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि इसे हेरिटेज लुक के साथ पुनर्विकसित किया गया है।
2: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्फ्रेंस है, उसकी चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम हमारे अवेलेबल हैं और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री हैं, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक एसी वेटिंग हॉल भी है, डिपार्चर हॉल से वो है लिंक और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेल्टर की सुविधा है। तीन प्लेटफॉर्म में तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
3: राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से शेड्यूल मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की तारीख बताने के निर्देश दिए। पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार पंचायत चुनावों को समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास उसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान करते हैं उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार पूरी तरह से तैयार भी है।
1: जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती रंगनाथन ने बताया कि इस दौरान प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
5: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको प्रॉब्लम्स है उनके सुझाव के लिए।
3: प्रदेश भर में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 5 दिन तक उच्च जोखिम वाली महिलाओं की विशेष निगरानी की गई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी संवेदनशील है। विभिन्न स्थानों पर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की टीम इसके वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। श्री खेवसर ने कहा कि अधिकतर मामलों में किसी तरह के संक्रमण और दवाओं के रिएक्शन की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
6: जयपुर से एक विशेष दल आया यहाँ पर, हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया जो दो की डेथ हुई, हाई बीपी और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दो की डेथ हुई है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब और जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं।
1: जयपुर के होम्योपैथी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाव बागड़े और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 760 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री श्री जाधव ने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को दुनिया भर में अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।
7: देश में भी आयुष शिक्षा का विस्तार हुआ है, आयुष चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है, अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी सुदृढ़ हुए हैं। डिजिटल

0: विकसित हुए हैं तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है।
1: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सिरोही जिले के मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
2: एमएसएमई के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है, इस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा भाव मिले, उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। हम किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो जो बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजना आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा।
3: प्रदेश का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया है। ये केंद्र अदालती मामलों में संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा, साथ ही पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल होगा और भविष्य में राजस्थान के अन्य जिलों में भी ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। पेश है समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी जयकिशन शर्मा की रिपोर्ट।
4: अति संवेदनशील गवाह बयान केंद्र, जिसे वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर भी कहा जाता है, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस केंद्र में पॉक्सो सहित अन्य संवेदनशील मामलों के पीड़ितों और गवाहों के बयान सुरक्षित, सम्मानजनक और भय मुक्त वातावरण में दर्ज किए जाते हैं। इसका उद्देश्य गवाहों और पीड़ितों पर मानसिक दबाव कम करना तथा उन्हें बिना किसी भय या प्रभाव के अपना पक्ष रखने की सुविधा उपलब्ध कराना है।
1: देश भर में जुलाई माह को अंगदान जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आम लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन सोटो से जुड़े डॉक्टर धर्मेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर की जा रही हैं।
5: हम आम जन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रांडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
3: जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल का कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग 2000 से अधिक मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर अनिल शर्मा ने बताया कि ये आधुनिक तकनीक पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में कम दर्द, कम रक्तस्राव, तेजी से स्वस्थ होने और बेहतर परिणाम के लिए जानी जाती है।
6: हमारे हिंदुस्तान में SMS मेडिकल कॉलेज में जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हमने यहाँ पर 32 तरह के ऑपरेशन कर दिए, जबकि सारी दुनिया में 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें भी जांघ पे चीरा लगाया जाता है। हमारे यहाँ हमने 2000 ऑपरेशन कर दिए कुल मिलाकर मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में, जिसमें हमने 32 तरह के अलग अलग ऑपरेशन किए हैं और हमारे सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं और हमारी सक्सेस रेट करीब 99.5% है।
1: प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग लैब बनाई जाएगी। पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों की राज्य स्तरीय वेबिनार में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा मिल सकेगी। वेबिनार के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न स्कूलों के नवाचारों और सर्वोत्तम नीतियों को अन्य स्कूलों में भी लागू किया जाएगा।
7: राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल्स के माध्यम से जो एजुकेशन मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, इनमें कई नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने आए हैं। ये हम भारत सरकार में सामने भी प्रस्तुत करेंगे और इसी क्रम में अन्य स्कूल्स को भी डेवलप करने के लिए सारे प्रयास, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसको हम लोग इसी क्रम में और भी वेबिनार आयोजित करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स को राज्य के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अपना चैलेंजेस और सक्सेसेस पूरा राज्य में बाकी सब लोग सुन के सीख सकें।
3: विश्व

0: युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन हुए। प्रभात फेरी, रैली, अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करियर मार्गदर्शन सत्र भी रखे गए। जयपुर में आयोजित समारोह में कौशल, रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री के विश्नोई ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: पिछले ढाई वर्ष में राइजिंग राजस्थान है पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इनवाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी, ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ PM सेतु वाली स्कीम से ITI का, आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे, सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
2: झालावाड़ में राज सखी मार्ट और कैफे शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इसका शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये कैफे केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच है।
3: इस पूरे कैफे को और इस डिपार्टमेंटल स्टोर को हमारी जो राजीव की जो महिलाएं हैं वही संचालित करेंगे। सेल्समैन से लगा करके, कुक से लगा करके और रिसेप्शनिस्ट तक सारा का सारा ये कैफे राज सखी के नाम से जाना जाएगा और जो हमारी राजीव की महिलाएं हैं वो इसे संचालित करेंगी। यहाँ पर जो राजीव की महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन भी होगा, उनका एक तरह से शोकेसिंग भी होगी और जो भी आसपास जो यहाँ झालरापाटन में पर्यटक आते हैं उनको एक स्तरीय कैफे यहाँ मिलेगा।
0: श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से सोमवार को मुलाकात होगी। अब हमें इजाजत दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रामनाथ मीना।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से, कई महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। और प्रदेश में आज से मॉनसून की गतिविधियों में तेजी की संभावना, 4 संभागों में बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार और इन्हें पारित किए जाने की संभावना है। इससे पहले कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। मॉनसून सत्र से पहले कल ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से मुख्य मुद्दों और रचनात्मक चर्चाओं में भागीदारी करने और संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू

0: रूप से चले हैं। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: गौरतलब है कि मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा। 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में आज राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्ष चुनाव की तैयारियों, ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति से न्यायालय को अवगत कराएंगे। राज्य सरकार की ओर से चुनाव कराने की समय सीमा भी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। इससे पहले उच्च न्यायालय चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी जता चुका है। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने कोटपुतली बहरोड जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोटपुतली पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक में आमजन से संवाद कर यातायात व्यवस्था, अवैध पार्किंग, जाम और बढ़ते अपराध से जुड़े सुझाव और समस्याएं सुनी। इस दौरान नागरिकों ने दिन में पुलिस गश्त बढ़ाने, थाने के डिजिटलीकरण और पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। पुलिस महानिरीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राहुल प्रकाश ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।
2: जनता की तरफ से जो सुझाव आए या जो उनकी समस्याएं थी वो सारी ऐसी थी जिसपे काम करना चाहिए हमें और उसको हल करना चाहिए। उसके लिए बहुत जल्दी काम करके हफ्ते भर के अंदर मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट की है कि इनको वापस सूचित भी करें। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से निवेदन किया था कि साइबर क्राइम जो कि बहुत तेजी से विकराल रूप धारण कर रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता के बीच में जागरूकता हो। वो लोग ज़रूर अपने घर में, अपने समाज में, अपने कार्यस्थल पर बात करें कि किस प्रकार से विभिन्न तरीकों से साइबर क्राइम हो रहे हैं, जिससे कि लोग उससे बच सकें। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी मैंने सभी से निवेदन किया है कि बहुत ज़रूरी है कि आपस में जागरूकता हो।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाटू श्याम जी, गिरिराज जी और पुष्कर के ब्रह्म मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए विभिन्न काम किए जा रहे हैं। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। कल जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के साथ शेखावाटी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर और पुष्कर जैसे पर्यटन स्थलों को भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
3: और भी बहुत सारी जगह, इन सब जगहों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और वहाँ पर भी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी और पूरे साल भर सिर्फ वो जो 6 महीने हैं जब टूरिस्ट भी उस समय आते हैं और शादियाँ भी उस समय होती हैं। उसके अलावा ये भी थोड़ा ध्यान दें कि और भी सावे बहुत होते हैं गर्मियों में, मानसून में, उनमें भी अगर शादियाँ होंगी तो ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन राजस्थान बन जाएगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार मिलेगा लोगों को, उनको बार बार बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। ये बात भी
1: कोटा विश्वविद्यालय ने कृषि पर्यटन के क्षेत्र में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे की एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ 5 वर्ष का समझौता किया है। इसके तहत कृषि पर्यटन से जुड़े नए डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया

0: किए जाएंगे। इनमें विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, अध्ययन भ्रमण और व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। अलवर जिले के सरिस्का बाग अभयारण्य में वन्य जीवों के लिए सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति व्यवस्था शुरू की गई है। अभयारण्य के DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया कि सौर ऊर्जा की मदद से जंगल में स्थित वाटर होल तक नियमित पानी पहुंचाया जा रहा है। इससे बाघों और अन्य वन्य जीवों को विशेषकर गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है।
1: सोलर एनर्जी से दो तीन चीज हो रही हैं। एक तो बोरवेल्स के माध्यम से वाटर होल्स भरे जा रहे हैं, दूसरा जो हमारे इंटीरियर जो चौकी है वहां पर सोलर एनर्जी के माध्यम से उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि हमारा स्टाफ वहां रह पा रहा है। बोरवेल्स से क्या हो रहा है कि जो वाटर होल्स हैं, जो ये पर्टिकुलरली ये जो गर्मी का दो तीन महीने हैं ये क्रूशियल हैं, जहां पानी कहीं भी नहीं होता है तो वो वाटर होल्स जो भरे जा रहे हैं, जिससे क्या है कि जो माइग्रेशन जो हो रहा है एनिमल्स का, टाइगर्स का दूर तक माइग्रेशन होता है वो थोड़ा सीमित हो जा रहा है, और उससे क्या है कि हमें टाइगर्स देखने को भी ज्यादा मिल रहे हैं, उनका एक जगह उनका लोकेशन भी केंद्रित हो रही है, इसके साथ ही साथ उनको पीने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी भी मिल रहा है।
0: प्रदेश में आज से मॉनसून की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कल से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने और 22 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बरसात हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। माउंट आबू में 2.5 मिलीमीटर और चित्तौड़गढ़ में बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से, कई महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। और प्रदेश में आज से मॉनसून गतिविधियों में तेजी की संभावना, कई संभागों में बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, और सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए

0: ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो, इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी तो श्रोताओ, अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर।

0: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
3: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
3: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है। लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
3: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
3: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
5: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
3: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
5: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
5: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
3: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
5: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
6: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
5: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
6: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
7: पता नहीं ये हंस कैसे बता

0: आएगा
1: कभी मैं बैठ कर
2: झाड़ को मिलना चाहिए
3: कुमार देवदत्त आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए
4: ओ प्रिय हंस मेरे पास आओ आ जाओ आओ मेरे पास आ जाओ
5: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता

0: आ जाओ।
1: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।
2: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
3: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
1: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
4: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो।
8: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए है। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
1: श्वेत केतु जी, पिताजी, क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
2: हाँ हाँ दत्त।
1: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं।
2: नहीं दत्त,
1: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
2: जी दत्त, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे?

0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है
1: जीतात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है
1: जी। पिताजी,
0: वो उससे दूर है। वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेतकेतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल,

0: कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वनियांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म कराम है, बोल बच्चन, स्वर है हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल के।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

तुम बिन टू इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मर्डर टू, स्वर है क्षितिज तारे, सेम भट्ट और मिथुन के।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

फैशन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, मोहित चौहान और नेहा भसीन की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। अरिजीत सिंह के स्वर में, फिल्म का नाम है गदर 2।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: असली नोट से क्यों खेल रहा है
3: ब्रो? ये फटा है।
4: सुन, फटे फटे पुराने नोट को
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म आरजू का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मों से गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है पाठशाला, स्वर है कैलाश खेर का।

0: पिंकी तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म बागी टू का ये गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मणि चैनल से सुन रही हैं। दिन के 11 बजे हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मनचली से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा,

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा था हर्षद जयपुरी ने, गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने, फिल्म थी यकीन। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत श्यामल मित्रा का। फिल्म का नाम है आनंद आश्रम।

संतोष आनंद के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत को गाया था कमलेश अवस्थी ने और फिल्म थी प्यासा सावन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप इस वक्त आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मरु चैनल पर सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए रविंद्र जैन के लिखे गीत को, संगीत दिया है रविंद्र जैन ने, फिल्म का नाम है सुनैना और गीत को गाया है हेमलता ने।

कार्यक्रम में आप सुनिए राहुल देव बर्मन के लिखे गीत को, माफ कीजिएगा, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, गीत को गाया है किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है कुदरत।

आनंद पक्षी के लिखे गीत को संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने, गीत को युगल स्वर दिया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और फिल्म थी शक्ति। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत एस डी बर्मन का।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म गोलमाल किस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में

0: अगले दो दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी सभा में दिन में 12 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे नाटक गोरख धंधा। लेखक होंगे असद अली असद। फिल्म संगीत सुनेगा हमारी सभा में दिन में 12 बजकर 40 मिनट पर और दिन में 2 बजकर 30 मिनट पर। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। समय रहेगा दिन में 1 बजकर 5 मिनट। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, विज्ञान में महिलाओं के बढ़ते कदम, मानसिक एकाग्रता के लिए शतरंज, विश्व शतरंज दिवस, दिल की सेहत और नर्सरी मैनेजमेंट और फूलों में सजाए बगिया। साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता बुद्ध के संदेशों की जीवन में प्रासंगिकता। वार्ताकार होंगी श्रीमती पूनम गर्ग। ये सभा हमारी संपन्न होगी दिन में 3 बजे।

युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा चंद्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और आत्मविश्वास से सफलता। साथ ही आप सुनेंगे पीएच स्केल और आरपीएससी। आखिर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम। संध्या 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रमों का विवरण। संध्या 6:05 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से संध्या 6:40 पर। संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, जल है तो कल है, श्रम योगी मानधन योजना और पारंपरिक खेलों से संपूर्ण शारीरिक विकास। आखिर में सुनिएगा लोकगीत और मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

यह था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है नाटक गोरख धंधा। लेखक हैं असद अली।

0: भाइयों और बहनों, हमें अपने देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना है। इसके लिए कमर कसनी होगी हम सबको। जी तोड़ मेहनत और दृढ़ विश्वास से ही हम देश तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। देश की तरक्की के लिए काम करने वाले आप सभी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपके शहर की सुविधा के लिए एक विशाल सामुदायिक भवन की घोषणा करता हूँ। सामुदायिक भवन इसलिए कि आप लोगों को शादी ब्याह समारोह वगैरह में महंगे होटल किराए पर ना लेने पड़े। इसके लिए मैंने मंत्री जी से निवेदन कर दिया है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि पार्लियामेंट खत्म होते ही मैं आपका ये काम करवा दूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये काम जल्दी हो जाएगा। बस हमें आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।
1: सर, ये सामुदायिक भवन कब तक बन जाएगा?
0: है भाई, जल्दी, बस जल्दी बन जाएगा।
2: मगर कब तक
0: है भाई? अरे भाई, आज घोषणा की है, थोड़ा समय तो लगेगा ही ना, है भाई?
3: कितना समय लगेगा सर?
0: अरे मैडम, हम जल्दी आपको भूमि पूजन का न्योता भेजेंगे। भूमि पूजन के बाद ही काम शुरू होगा ना, है भाई?
3: मगर भूमि पूजन होगा कब सर?
0: है भाई, आप कहें तो कल ही करवा दें।
3: सर, हम तो कहेंगे कल नहीं, आज कीजिए, अभी कीजिए, इसी में सबका फायदा है।
0: है भाई फायदा? हाँ हाँ, फायदे की तो बात कर रहे हैं मैडम जी, मगर फायदे का भी एक कायदा होता है। हम कायदे कानूनों के बहुत पक्के हैं। अरे आगे की सारी घोषणाएं आज ही करवाएंगी क्या मैडम जी? है भाई? अरे कुछ आगे के लिए भी तो छोड़ो, है भाई? है?
2: अच्छा, अच्छा।
0: अरे आइए आइए, आप सभी पत्रकार बंधु आइए, नाश्ता तैयार है, चाय लीजिए ना, आइए ना, आइए ना, है भाई? है? है?

0: सर वो डेलीगेशन वाले आपसे मिलने आए
1: हैं भाई। अरे सर देख क्या रहे हो, भेजो ना उनको अंदर।
2: सर सर भूमि पूजन में इतना समय कैसे लग गया
1: है भाई? क्या कहा आपने समय, ये तो बहुत पहले ही हो गया है भाई। जमीन अलॉट करवाना, उस पर भवन की परमिशन लेना कोई हंसी सट्टा थोड़ी है भाई। कभी हमको मंत्री जी से मिलना पड़ता है, कभी जिलाधीश महोदय से, तो कभी किसी और से है भाई।
2: ओहो
1: हाँ, पिछली मीटिंग में शायद आप नहीं थे, सारी बातें खुलकर अपने सभी पत्रकार भाइयों से हो गई थी है भाई है? अरे भाई हम तो सेवक हैं, सेवक जनता के और आप लोगों के। आज भूमि पूजन हो गया, समझो काम शुरू। रही बात खत्म होने की, तो काम कभी खत्म नहीं होता है भाई, गतिशील रहता है और रहना भी चाहिए है भाई। हाँ
0: सर एक जरूरी बात थी
1: है भाई। अरे यार तुम्हारी जरूरी बातें बहुत रहती हैं, हैं? बोलो।

0: सर एक मिनट के लिए, आप थोड़ा अलग आएंगे सर?
1: हैं भाई, अच्छा आते हैं, माफ कीजिएगा मैं अभी आया। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे?
0: सर आपने यह सामान के पास चौकीदार के लिए कहा था ना?
1: हैं भाई, हाँ कहा था।
0: मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है।
1: हैं भाई कौन, कहाँ है
0: वो? सर मेरी बुआ के लड़के के ताऊ के बेटे का भांजा है।
1: हैं भाई कितना नजदीकी रिश्ता है तुम्हारा उससे, हैं भाई?
0: और ये सर वही है जिन्होंने चुनाव में आपकी बहुत मदद की।
1: हैं भाई हाँ, मगर आदमी ईमानदार और भरोसे वाला होना चाहिए, लाखों रुपए का माल रहेगा वहाँ, हैं भाई?
0: बिल्कुल ईमानदार है, समझदार है और भरोसे का भी है, आखिर अपने खानदान का है, अपने से दगाबाजी कभी नहीं करेगा।
1: हाँ भाई।

0: ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਲਿਆ ਦੀ ਮਸਾਲਾ
1: इतनी धीरे काम क्यों कर रहे हो? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा। अरे हरिया, ये क्या तुम मेरा मुंह देख रहा है? अरे बेटा, मशीन में बजरी सीमेंट पानी भी डालेगा कि नहीं? इधर देखो तो। कमली बेटा, कमली बेटा, तगारी में थोड़ी और मिट्टी भर दे। ये क्या बेटा, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ढो रही है तू? अरे कम वक्त हो, तुम सब मिलकर मुझे बर्बाद कर दोगे क्या है? अरे ये काम मुझे कैसे मिला है ये मैं जानता हूँ। अरे कमाया कुछ नहीं, 50 जगहों पर पैसा ही पैसा दिया है, और जब कमाने का समय आया तो तुम लोग मेरे दुश्मन बन गए हो। अरे हरिया रुक जा बेटा, रुक जा। अरे नाश पीते इतनी सीमेंट क्यों मिला रहा है तू?
2: अरे आप ही ने तो कहा था सरकार।
1: मैंने कहा था? अरे बेटा कब कहा था?
2: अरे जब साहब लोग आए थे तभी तो कहा था आपने सरकार।
1: अरे उनके आने के समय कहा था ना?
2: हाँ।
1: और वो अब है यहाँ?
2: नहीं सरकार।
1: तो फिर बेटा क्यों सीमेंट की ऐसी की तैसी कर रहा है हरिया बेटा? है क्या है?
3: अच्छा अच्छा,
1: क्या अच्छा?
3: समझ गया सरकार।
1: अरे तू कोई पहली बार थोड़ी आया है मेरे पास काम के लिए है? अरे बेटा तुझे तो सब पता है हम लोग कैसे काम करते हैं, भूल गया क्या बेटा?
2: नहीं भूला सरकार।
1: तो फिर?
2: फिर क्या?
1: अरे फिर क्या,
2: वो तो आप साफ लोगों के सामने सब मजदूरों को कह रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार जरा काम बढ़िया और अच्छा
1: है।
2: हुजूर बात दरअसल ये है कि इधर कुछ दिनों से देशभक्ति की बहुत ही अच्छी भावना करवट ले रही है,
1: है?
2: जगह जगह ड्रामे हो रहे हैं सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, इसलिए मैंने सोचा इस बार हम भी जरा ईमानदारी से।
1: ईमानदारी गई तेल लेने, समझ गया ना? चुप कर तू। अरे जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे ही काम करना है बेटा, समझ गया ना तू?
3: समझ गया सरकार।
1: हाँ बेटा। अच्छा हरिया बेटा सुन, एक बात और सुन बेटा।
4: हाँ जी सरकार।
1: तू इस चौकीदार से बात कर बेटा, तेरी दोस्ती बढ़ा।
4: अच्छा,
1: इसके तरकश में कितने तीर है जरा पता तो कर।
4: अभी बता करता हूँ।
1: ये हमारे बहुत काम का हो सकता है अगर तूने इसे पटा लिया तो।
4: वो कैसे?
1: अरे अरे हरिया, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या है? अरे बेटा अगर हम तय मानक के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो ये हमारी शिकायत भी कतो कर सकता है।
4: जी हाँ सरकार। हाँ। ये बात तो है।
1: हाँ बेटा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इससे भी दोस्ती बढ़ा, इसका भी ध्यान रख ताकि हमारा काम अपने हिसाब से हो सके। समझ गया ना बेटा?
2: समझ गया सरकार, पूरी तरह समझ गया। समझो सरकार, ये आज से मेरा पक्का दोस्त।
1: हाँ, बेटा।

0: अरे ओ भाई जागो भाई जागो।
1: हाँ हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए, कौन है आप लोग?
0: अरे चौकीदार जी, हम लोग पत्रकार हैं, इधर से निकल रहे थे, यहाँ रोशनी देखी रुक गए।
1: अच्छा अच्छा, बैठिए साहब, मैं आप लोगों के लिए पानी लाता हूँ। लाया मैं अभी। लीजिए पानी पी लीजिए बेटा।
2: ये भवन का काम बंद है क्या?
1: हाँ मैडम जी।
0: कब से?
1: जब से भवन बनना शुरू हुआ तब से बेटा। अब तक 5 बार काम शुरू हुआ था।
0: 5 बार?
1: हाँ, फिर रुका, शुरू हुआ फिर रुका बेटा। कई ठेकेदार आए और गए।
2: और तुम यही हो?
1: हाँ मैडम जी, मैं यही हूँ।
2: काम बंद क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ पता है तुम्हें?
1: बड़े लोगों की बड़ी बात है बेटा, मैं क्या बताऊँ अब साहब।
0: ये भवन कितने सालों से ऐसे ही पड़ा है चौकीदार जी?
1: 10 सालों से।
0: 10 सालों से?
1: हाँ, इसकी यही दुर्दशा देख रहा हूँ मैं।
0: अच्छा, 10 सालों से? 10 सालों से ये भवन ऐसे ही पड़ा है, इसका निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है भाई?
2: लगता है कमीशन बाजी के गोरख धंधे में उलझा हुआ है ये आधा अधूरा भवन।
0: मुझे भी यही लगता है चौकीदार जी, हम भवन देखना चाहते हैं।
1: आधा अधूरा भवन, आधा अधूरा देखकर क्या करेंगे साहब?
2: तुम बहुत भोले हो, हम इस आधे अधूरे भवन को अंदर से अच्छी तरह देखेंगे, तभी तो इसके बारे में आवाज उठा पाएंगे। आवाज उठेगी तो तुम देखना, ये भवन जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा।
1: अच्छा बेटा, क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है?
2: बिल्कुल हो सकता है।
1: चलिए मैं आपको लालटेन ले जाकर भवन दिखा देता हूँ बेटा।
0: अरे नहीं, तुम यहीं ठहरो, लालटेन हमें दे दो, हम देख लेंगे, तुम्हारे को तो बाहर बैठना भी जरूरी है ना।
1: हाँ ठीक कहते हो बेटा, मैं यहीं बैठता हूँ।
0: हम अंदर जा रहे हैं, हम भवन के चप्पे चप्पे का निरीक्षण करेंगे। हाँ। हमें थोड़ा समय लग सकता है, तुम फिक्र मत करना, हम जा रहे हैं।
1: ठीक है बेटा।
2: वाओ, इससे ज्यादा सेफ जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। वेरी गुड, फैंटास्टिक, मजा आ गया।
0: मजा तो अब आएगा जब हम चप्पे चप्पे का निरीक्षण करना शुरू करेंगे। ये पत्रकारों से बहुत डरता है, पत्रकारों से सब डरते हैं, क्यों आए ना मजा पत्रकार बनकर।
2: अरे अरे धीरे बोलो, उसे शक न हो जाए कि हम पत्रकार नहीं हैं और यहाँ किसी और इरादे से आए हैं।
0: शक होने का तो सवाल ही नहीं उठता, कई लोग पत्रकार के नाम पर पहले भी आ चुके हैं यहाँ। ये पत्रकारों से बहुत डरता है। अब निरीक्षण शुरू करें।
2: हाँ, मुझे भी अब इंतजार नहीं होता, आओ ना।

0: चौकीदार जी नमस्ते।
1: नमस्ते बाबू साहब।
0: और चौकीदार जी क्या हालचाल है आपके?
1: बस गुजर रही है साहब।
0: इस भवन का क्या मामला है? कब तैयार होगा ये? मैं बच्चा था तब से इसको ऐसे ही देख रहा हूँ।
1: मेरे चेहरे मेरे हाव भाव से इस भवन की दुर्दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है बाबू साहब। हाँ, पत्नी के देहांत के बाद मैंने इसको ही अपना घर मान लिया है। रोटी पानी का जुगाड़ हो जाता है, मुझ जैसे आदमी को और क्या चाहिए बाबू साहब।
0: मगर मैं तो

0: जी पूछ रहा था आपसे।
1: वही तो बता रहा हूँ, 10 सालों से मैं यहीं हूँ। ठेकेदार बदलते रहे, इसकी उपेक्षा और दुर्दशा बद से बदतर होती गई और आज भी हो रही है।
0: मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ता हूँ, कॉलेज का सांस्कृतिक सचिव हूँ। मेरी समाज सेवा में भी रुचि है। मैं चाहता हूँ कि इसके पुनर्निर्माण में मैं सहयोग करूँ। मेरे सभी साथी भी तैयार हैं सहयोग करने के लिए।
1: मगर आप इसमें क्या और कैसे सहयोग करेंगे बाबू?
0: युवा शक्ति ही हर देश की रीढ़ की हड्डी होती है। उसकी उपेक्षा महंगी पड़ सकती है। हम ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। देखते हैं कब तक इनके पुनर्निर्माण का आदेश नहीं निकलता है।
1: बाबू साहब, मेरी इन बूढ़ी आँखों ने बहुत लोगों को देखा है। बहुत से नेता, पत्रकार, बड़े बड़े साहब लोग यहाँ आए। कभी इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी फोटो खींचते हैं, दिन में आते हैं और कभी रात में आकर इस भवन का निरीक्षण करते हैं।
0: कुछ भी हो, इस भवन के सच्चे मित्र, हमदर्द और मददगार आप ही हैं। आपने ही इस भवन को संभाल कर रखा हुआ है, वरना ये आधा अधूरा विशाल सामुदायिक भवन समाज कंटकों का अड्डा बन जाता। आपके ही रौब और दबदबे के कारण कोई भी समाज कंटक इधर फटकने की जरूरत ही नहीं कर सकता। धन्य हो बाबा, आप तो धन्य हो।
1: बस बस बाबू साहब, बस आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं।
0: नहीं नहीं चौकीदार बाबा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: सच कह रहा हूँ, इस भवन को पूरा बनवाने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम भी करेंगे। वो सब भी करेंगे जो जरूरी होगा। इतिहास गवाह है, जिसने भी युवा शक्ति की उपेक्षा की वो बर्बाद हुआ है, बर्बाद।
1: ठीक है बाबू साहब, जैसा आप ठीक समझे, मैं आपके साथ हूँ।

0: रुको ए रिक्शे वाले, रुको भैया।
1: ये भी निकल गया, जोरदार बारिश हो रही है। चमक रही है, शहर यहाँ से बहुत दूर है। रिक्शे वाले भी नहीं रुक रहे, क्या करूं मैं इस तूफानी रात में। सबको अपने अपने घर जाने की जल्दी है, मैं क्या करूं क्या करूं, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। अरे वो दूर सामने रोशनी दिखाई पड़ रही है, शायद शायद वहां रात गुजारने का जुगाड़ बैठ जाए। जाता हूँ वहां, जाता हूँ, शायद काम बन जाए, जाता हूँ।
0: कोई है भैया? अरे भैया कोई है?
1: पता नहीं
2: कौन है भाई। आता हूँ आता हूँ। अरे जरा ठहरो तो, आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ।
1: नमस्ते बाबा।
2: नमस्ते भाई, कौन हो तुम और इस तूफानी बारिश में किधर घूम रहे हो?
1: बाबा बाबा मेरा नाम रामलाल है बाबा, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ बाबा। क्या यहाँ पर रुकने की जगह मिल सकती है?
2: बिल्कुल मिल सकती है।
1: अच्छा,
2: तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो।
1: हाँ,
2: हाँ, आओ आओ अंदर आ जाओ।
1: हाँ बाबा,
2: हाँ अंदर आ जाओ। हाँ, मैं दरवाजा बंद करता हूँ।
1: ठीक है बाबा।
2: हाँ, इधर आओ, बैठ जाओ इस कनस्तर पर। यहाँ पर यही स्टूल है भाई।
1: ठीक है बाबा, बैठ जाता हूँ।
2: अब बताओ इस भयानक तूफानी रात में कहाँ घूम रहे थे?
1: बाबा मेरा बेटा खो गया है बाबा, उसी को ढूंढते शहर शहर के धक्के खा रहा हूँ। आज यहाँ आया हूँ कि शायद मेरा बेटा मिल जाए बाबा।
2: मिल जाएगा।

0: मिल जाएगा जी, छोटा मत करो। अरे उस भगवान पर भरोसा रखो।
1: हाँ बाबा।
0: अच्छा रामलाल।
1: हाँ बाबा।
0: तुम यहाँ रुक सकते हो, मगर ये जगह तुम्हें सूरज निकलने से पहले छोड़नी होगी।
1: अच्छा।
0: खुले में नल लगा है।
1: हाँ।
0: वहीं तुम्हें नहाना होगा। शौच के लिए भी बाहरी जगह है, वहीं तुम्हें जाना होगा।
1: हाँ।
0: अगर ये शर्त मंजूर है तो तुम रात को यहाँ रुक सकते हो। हाँ
1: ठीक है, मुझे मंजूर है।
0: मंजूर है तो निकालो 10 रुपए।
1: 10 रुपए?
0: हाँ 10 रुपए भाई, 10 रुपए फौरन निकालो। हाँ भाई फौरन निकालो, 10 रुपए निकालो अगर यहाँ रुकना है तो, क्योंकि 10 रुपए में तुम्हें कोई भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने यहाँ सिर्फ बोर्ड ही नहीं लगा रखा है, बाकी ये विशाल सामुदायिक भवन वर्षों से मेरे लिए सराय के रूप में ही काम आ रहा है। बहुत वर्षों से ये गोरख धंधा चल रहा है भाई, तुम्हारे जैसे 10-12 लोग और भी अंदर आराम कर रहे हैं। तुम भी पैसा दे दो और अंदर जाओ, आराम करो, जाओ सो जाओ। अरे देख क्या रहे हो, खड़े क्यों हो, जाओ 10 रुपए दो, अंदर जाओ।
1: सोच रहा हूँ इतने बड़े सराय में साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा रखा।
0: सच बता दूं,
1: मर्जी आपकी।
0: दरअसल ये सरकारी सामुदायिक भवन है, ठेकेदार ने काम रोक दिया है और बिजली के बिल भी भरे नहीं है, इसलिए बिजली कट गई। अब वर्षों से काम बंद पड़ा है, यहाँ तक कि मुझे भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। वरना सच कहता हूँ कि चौकीदार होकर मैं ये धोखेबाजी का काम नहीं कर सकता था। इस नौकरी के लिए मैंने 1.25 लाख रुपए दिए, 1.25 लाख रुपए।
1: 1.25 लाख?
0: हाँ, वो भी तो कमाने हैं ना। क्यों, गलत कहा मैंने? नहीं ना। ठीक है, अब सो जाओ। बारिश और तेज हो गई है। हाँ, ये गोरख धंधा बस यूं ही चलता रहेगा। हाँ सो जाओ, ये गोरख

हम अपने सुनने वाले श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें, आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से गीत।

कहते हैं कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो हम हैं। जल की एक एक बूंद बचाइए, अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। हरे बड़े पेड़ प्रकृति का श्रृंगार है। मानसून के इस मौसम में एक पेड़ जरूर लगाएं और अपनी प्रकृति को सहेजें।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत गाया है अलका याग्निक ने, साथी कलाकार कुमार शानू। फिल्म का नाम है साजन। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म जोश का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत था अनु मल्लिक का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वर में फिल्म वीर जारा का ये गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म वाई चीट इंडिया का ये गीत। गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने और संगीत है कुणाल का।

जुबिन नौटियाल के गाए फिल्म वाई चेट इंडिया के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, परंतु विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने और शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे।
0: गौरतलब है कि 25 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र में 19 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। ये बात उन्होंने आज जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक निजी संस्थान के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C, साइबर हेल्पलाइन 1930 और ऑपरेशन एंटीवायरस जैसे प्रयासों के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री थार योजना 2026-2027 के तहत श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 40,67,00,000 रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी मिल गई है। योजना में 214 विकास कार्य शामिल किए गए हैं। इनका लाभ अनूपगढ़, घड़साना, करणपुर, रायसिंह नगर और श्रीगंगानगर पंचायत समिति की सीमा से सटे गांवों को मिलेगा। योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, खेल, महिला सशक्तिकरण, कृषि और पशुपालन से जुड़े काम कराए जाएंगे। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम चौहान ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 27,25,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयुर्विज्ञान की मानकीकृत सिंधी शब्दावली तैयार करने के लिए 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज से शुरू हो गई है। कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की ओर से किया जा रहा है। इसमें राजस्थान और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के चिकित्सा विशेषज्ञ, सिंधी भाषा के विद्वान और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लगभग 6,000 अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के मानक सिंधी पर्याय तैयार किए जाएंगे। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सालुम्बर में वीरांगना हाडारानी पैनोरमा के निर्माण के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 6,634 वर्ग मीटर सरकारी भूमि निःशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत नगर परिषद क्षेत्र में ये भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पैनोरमा में वीरांगना हाडारानी के शौर्य, त्याग और बलिदान से जुड़े प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके निर्माण से मेवाड़ के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सालुम्बर में पर्यटन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिथुआनिया के विल्नियस में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सभी 4 सदस्यों को बधाई दी है। इनमें राजस्थान के पाली जिले के निशीत कालाने भी शामिल हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय टीम ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी और सिस्टमैटिक्स और प्लांट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे विषयों में असाधारण ज्ञान का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं संध्या शर्मा और मीनाक्षी स्वर्णकार।

0: आकाश की बुलंदियों को छूने का हौसला रखने वाली, घर को स्वर्ग बनाने वाली और समाज को एक नई दिशा देने वाली आप सभी सजग, सशक्त और खूबसूरत महिलाओं का स्वागत है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। और मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी स्वर्णकार और मेरे साथ है
1: संध्या ओझा। तो स्वीकार कीजिए सखियों हमारा प्यार भरा नमस्कार। सखियों कहते हैं कि पंखों की क्या बिसात जब हौसले उड़ान भरते हैं। ये आज की नारी है जनाब जो हर मोड़ पर इतिहास रचती है।
0: बिल्कुल सखियों, आज का हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है आपकी खुशियों को, आपके सपनों को, आपकी सेहत को और आपकी उन कही कहानियों को, उन अनकही कहानियों को जो हर महिला को खास बनाती है।
1: आज महिला जगत में हमारे पास आपके लिए बेहद खास चर्चाएं, कुछ बेहतरीन नुस्खे और ढेर सारी बातें हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा सखियों और जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में, क्योंकि अब एक के बाद एक इतने खूबसूरत गीत आपके सामने आएंगे कि बस आप हमारे दीवाने हो जाएंगे।

0: बहनों कहते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जब मन में जिज्ञासा हो, सोच में नवीनता हो और हौसलों में उड़ान हो तो चांद भी दूर नहीं रहता। इसी विश्वास और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, जो कि हम आज मना रहे हैं। हर वर्ष 20 जुलाई को यह दिवस इसी विश्वास और वैज्ञानिक इसी विश्वास के साथ मनाया जाता है। जब वर्ष 1969 में पहली बार मानव ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, यह केवल अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धि नहीं थी बल्कि मानव की जिज्ञासा, साहस और ज्ञान की भी विजय थी।
1: सखियों, आज विज्ञान और तकनीक का संसार लगातार आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है और इस यात्रा में महिलाएं भी आत्मविश्वास के साथ, या ये कहें कि पूरे जोशो खरोश के साथ, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। कभी जिन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, आज वही वे वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता और मीनाक्षी ना जाने क्या क्या के अंतरिक्ष विशेषज्ञ के रूप में भी ना अपनी इतनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है कि बस महिलाओं की जय जयकार हो रही है हर जगह,
0: हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और भारत के लिए तो ये गर्व की बात है कि हमारे अंतरिक्ष अभियानों में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका लगातार मजबूत हुई है, चाहे चंद्रयान अभियान हो, मंगलयान हो या अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान। हमारी बेटियों और महिलाओं ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से यह सिद्ध किया है कि सफलता किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि अवसर और परिश्रम की होती है।
1: सोच सखियों, बहुत कहते हैं कि ना विज्ञान केवल प्रयोगशाला या अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है, है ना?
0: बिल्कुल।
1: ये ना हमारे दैनिक जीवन में भी वैज्ञानिक सोच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है सखियों। जैसे कि पौष्टिक भोजन कैसे बनाएं, स्वच्छता अपनाना, पानी और बिजली की बचत करना, नई तकनीक का सही उपयोग करना और बच्चों में प्रश्न पूछने की आदत को विकसित करना, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ही तो उदाहरण है मीनाक्षी।
0: बिल्कुल संध्या, सही बात कह रही हो। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, हर क्षेत्र में होना चाहिए और यदि घर की महिलाएं वैज्ञानिक सोच अपनाती है तो इससे पूरा परिवार जागरूक बनता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल।
0: जब माँ अपनी बेटी को विज्ञान पढ़ने, नए प्रयोग करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है ना, तब वह केवल एक बच्ची का नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य संवार रही होती है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बेटियों को यह ना कहें कि कुछ क्षेत्र उनके लिए कठिन है, बल्कि उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि मेहनत, शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर वे हर मंजिल हासिल कर सकती है।
1: विज्ञान में महिलाओं की सखियों बढ़ती भागीदारी नए भारत की पहचान बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हमें यह संदेश देता है कि बड़े सपने देखने का साहस ही बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत होती है।

0: जब महिलाएं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो उनका विकास केवल व्यक्तिगत कहते हैं ना मीनाक्षी कि व्यक्तिगत नहीं होता है, वो बल्कि पूरे देश का विकास को भी नई गति दे रही होती है।
1: बिल्कुल। तो आइए बहनों, इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने घर की बेटियों की जिज्ञासा को हम प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसर देंगे और विज्ञान के प्रति उनकी जो रुचि है ना उसे बढ़ावा देंगे। हो सकता है आने वाले समय में हमारे घर की कोई बेटी भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हो। और आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और विज्ञान के प्रति नई सोच विकसित करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो बहनों, हम आपसे यही कहेंगे कि जिज्ञासु बनिए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।

0: और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Cena.
1: सखियों, भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। वे कहते हैं कि मन की शांति, प्रेम, करुणा और सत्य

0: ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आइए हम सभी अपने जीवन में थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रेम और थोड़ी करुणा जोड़े, क्योंकि यही एक बेहतर समाज और बेहतर जीवन की पहचान है। और इसी से ही आज मिलती जुलती हमारी वार्ता है, जिसमें आप सुनेंगे बुद्ध के संदेशों की जीवन में क्या प्रासंगिकता है। और वार्ताकार है श्रीमती पूनम गर्ग।
1: बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को बुद्ध जयंती भी कहते हैं। ये दिन भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड तथा और भी कई देशों में मनाया जाता है। इस दिन बुद्ध धर्म के अनुयायी सूर्य उदय से पहले ही बौद्ध मंदिरों में एकत्र हो जाते हैं तथा यहाँ पर बौद्ध धर्म का झंडा लहराया जाता है तथा पवित्र भजन भी गाए जाते हैं। इस दिन भक्त फूलों की तथा मोमबत्तियों की भेंट अपने भगवान को अर्पित करते हैं। यह फूल और मोमबत्तियां प्रतीक हैं जीवन की नश्वरता के। ये भक्तों को इस बात का एहसास कराते हैं कि जैसे थोड़े समय के बाद ये सुंदर फूल मुरझा जाते हैं और मोमबत्तियां पिघल जाती हैं, उसी तरह हमारा जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अर्थात नश्वर है। कोई भी चीज यहाँ स्थायी नहीं है। इस दिन भक्तों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे कभी किसी जानवर को हानि ना पहुंचाएं। कई देशों जैसे श्रीलंका में इस दिन बहुत से जानवरों और पक्षियों को पिंजरों से आजाद किया जाता है। इसे सिंबॉलिक एक्ट ऑफ लिबरेशन कहा जाता है। यदि हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन में शांति और आंतरिक सुख का अनुभव करेंगे तथा जीवन के बंधनों से मुक्त होंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि शांति हमारे अंदर ही होती है, हम इसे बाहर खोजते रहते हैं। आज के समय में हमें लगता है कि सांसारिक उपभोग की चीजें जैसे पैसा, ऐशो आराम के संसाधन, सगे संबंधी तथा सांसारिक वस्तुएं इकट्ठी करेंगे तो अपने जीवन को आरामदेह बना लेंगे, इससे हमें शांति मिलेगी। किंतु यह सच नहीं है। शांति तो हमारे मन के भीतर होती है, केवल उसे महसूस करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने मन को शांत कर लें तो सांसारिक सुख सुविधाओं के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है? बुद्ध के अनुसार इंसान को अपने मन पर इतना काबू होना चाहिए कि वो संसार के बीच रहकर भी इससे अछूता रह सके, यही योग है। यह उपदेश आज के समय में हम सभी को अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। आजकल सुख सुविधा के इतने साधन हैं कि इंसान कम समय में सब कुछ पाना चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन यदि मन पर काबू हो तो वह केवल सही कार्य ही करेगा। उनका कहना है कि अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है, हमें परिश्रम के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। इसी से इंसान जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपको जो मिला है उसका अधिक मूल्यांकन ना करें और ना ही किसी से ईर्ष्या करें। इस उपदेश से हमें यह संदेश मिलता है कि जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी नहीं मिलती। आज के समय में जिंदगी की दौड़ धूप में इंसान जीना ही भूल गया है। एक दूसरे से मेल मिलाप समाप्त सा ही हो गया है। जीवन में दोस्तों और अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। बुद्ध जी कहते हैं कि एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर केवल आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा। यह शिक्षा आज के समय में बहुत उपयोगी है, क्योंकि बच्चों और बड़ों के स्वभाव पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है कि उनकी कंपनी कैसी है। बच्चे अच्छे दोस्तों के संपर्क में आकर जीवन में सफल हो सकते हैं, वहीं गलत संगत के कारण अपना जीवन बिगाड़ भी सकते हैं। अतः इस शिक्षा को याद रखते हुए हमेशा अच्छी संगत ही करनी चाहिए। इस समय महात्मा बुद्ध की एक और शिक्षा याद आ रही है कि घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि घृणा प्रेम से ही घटती है, यही शाश्वत नियम है। इस शिक्षा को यदि हम सब अपने जीवन में उतार लें तो हर देश में शांति होगी। आजकल दंगे, फसाद, हिंसा आदि इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहन ही नहीं कर पा

और दोनों ही एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ती ही रहती है। यदि हर मन अपनी नफरत भूल जाए और प्रेम से काम ले तो विश्व में चारों ओर शांति होगी। हमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों से कई जीवन मूल्यों की शिक्षा प्राप्त होती है। इन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला हाथ में रखने की तरह है जो तुम्ही को जलाता है। अर्थात हमें यह समझना चाहिए कि किसी के प्रति क्रोध को यदि हम मन में रखते हैं तो उस व्यक्ति को हम नुकसान पहुंचा सकें या नहीं, किंतु स्वयं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर क्रोध हमें ही जला डालता है और मनुष्य का व्यक्तित्व ही चिड़चिड़ा हो जाता है। क्रोधी मनुष्य को कोई पसंद नहीं करता। अतः हमें शांत एवं प्रसन्नचित रहने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उनका कोई फायदा नहीं। हम इस संदेश को अपने जीवन में अपनाकर उच्च विचार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है उन्हें कोई पसंद नहीं करता तथा ऐसा इंसान कहीं पर भी सम्मान प्राप्त नहीं करता। यानी यदि हम दूसरों को सफाई रखने के लिए कहते हैं तो आवश्यक है कि पहले स्वयं स्वच्छता रखें। यदि दूसरों को नियम और कानून का पालन करने के लिए कहें तो पहले स्वयं उनका पालन करें। यदि दूसरों को सेवा करने के लिए कहें तो पहले स्वयं सेवाभावी बनकर दिखाएं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है। जो वह सोचता है वही वह बन जाता है। वे कहते हैं कि हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह डलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। आज के प्रतिस्पर्धा के समय में बुद्ध का यह संदेश बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करते करते लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कई बार दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ऐसे में दिमाग पर और विचारों पर काबू होना अति आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, ये अवश्य होनी चाहिए, किंतु एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, किसी का नुकसान ना हो, ताकि स्वयं भी प्रसन्न रहें और दूसरों की खुशी भी ना छीने। बुद्ध कहते हैं हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी का बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। अतः स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। वे कहते हैं जीभ एक तेज चाकू की तरह है, बिना खून निकाले ही मार देती है। अतः हमें बोलने से पहले विचार अवश्य करना चाहिए कि कहे शब्दों से किसी का दिल न दुखे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को मजबूत एवं स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। वे कहते हैं स्वास्थ्य सबसे महान उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वसनीयता सबसे अच्छा संबंध है। अतः हमारे जीवन में स्वास्थ्य, संतोष और विश्वसनीयता का स्थान अन्य कोई वस्तु नहीं ले सकती। यदि हमारे पास ये अमूल्य चीजें हैं तो हमें अन्य किसी धन की आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक सुराही बूंद बूंद से भरती है। अतः हम सबको भी जीवन में स्वास्थ्य, संतोष और विश्वसनीयता को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य से कहा है कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान के क्षण में केंद्रित करो। यह शिक्षा आजकल के समय अनुसार बहुत उपयोगी है। इस शिक्षा का अनुसरण करते हुए इंसान बिना भविष्य की चिंता किए आज में अच्छे कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बुद्ध कहते हैं जीवन मिलना तो भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये अच्छे कर्मों की बात है। यह शिक्षा हमें सदा अच्छे कार्य करने के लिए तथा परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है। महात्मा बुद्ध ने कहा है हमें सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, यही परम धर्म है। हमें सदैव अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए तथा पशु बलि एवं मांसाहार से दूर रहना चाहिए। अतः हमें केवल अपने शौक के लिए अथवा मांसाहार के लिए जानवरों का वध नहीं करना चाहिए। इन मूक प्राणियों को भी हमारी तरह जीवन का अधिकार है। महात्मा बुद्ध कहते हैं अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। यह उपदेश हरेक व्यक्ति के लिए है। महात्मा बुद्ध ने सबसे गूढ़ सच को इतनी सरलता से पेश किया है कि हर धर्म और संप्रदाय के लोग इन संदेशों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को शांत और सुखी बना सकते हैं।

0: बहनों, कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। तो प्रेम बांटिए, करुणा अपनाइए और हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए। यही भगवान बुद्ध का संदेश है और यही सच्चे सुख का मार्ग है। तो अभी हमने कार्यक्रम में सुनी भेंट वार्ता बुद्ध के संदेशों की
1: वार्ता।
0: अभी हमने सुनी थी वार्ता बुद्ध के संदेशों की जीवन में प्रासंगिकता, और वार्ताकार थी श्रीमती पूनम गर्ग। और अब सुनते हैं कार्यक्रम में एक मधुर गीत।

0: इंसान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: मीनाक्षी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रसोई में काम करते करते अचानक याद ही ना रहे कि गैस पर क्या रखा है?
3: अरे बहुत बार होता है, ऐसे ही लगता है कि कुछ बोलना है, फिर याद करते हैं कि यार बोलना क्या था। या ऐसे मोबाइल उठाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना था, किसको फोन करना था, या
2: फ्रिज के पास खड़े होकर हम अक्सर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमें फ्रिज में से निकालना क्या था, है ना?
3: बहुत होता है
2: ये सब। ना क्या है कि हमारी जो भागदौड़ भरी दिनचर्या है और जो मानसिक तनाव है ना, उसका सबसे पहला जो असर है ना मीनाक्षी, वो हम सभी के ना मानसिक एकाग्रता पर पड़ता है।
3: बिल्कुल,
2: मन जितना शांत और एकाग्र होगा हमारे निर्णय भी उतने ही सही होंगे। लेकिन सवाल यह है कि मानसिक एकाग्रता बढ़ाई कैसे जाए? इसका नाम एक बहुत ही सरल और रोचक, या यूं कहूं कि एक प्रभावी उपाय है। पूछो क्या?
3: क्या है?
2: वो है शतरंज।
3: अरे वाह भाई, बहुत अच्छी बात कही तुमने। और आज हम विश्व शतरंज दिवस भी मना रहे हैं। हम बात करेंगे उस खेल की जो केवल मोहरों की चाल नहीं, बल्कि सोचने की कला, धैर्य की परीक्षा और बुद्धिमत्ता का उत्सव है। जी हाँ बहनों, हर वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। सदियों पुराना यह खेल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर चाल सोच समझकर चलनी चाहिए।
2: साथ ही सखियों, शतरंज की बिसात पर जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है, हर संभावना पर विचार करता है और कठिन परिस्थिति में भी घबराता नहीं है। यही गुण हमारे जीवन में भी सफलता का आधार बनते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी यदि मन संतुलित रहे तो हर चुनौती का सामना बहुत ही करना आसान हो जाता है।
3: और संध्या, शोध भी बताते हैं कि शतरंज खेलने से हमारी जो स्मरण शक्ति है, एकाग्रता है और तार्किक सोच और जो निर्णय लेने की क्षमता होती है ना, वो बेहतर होती है
2: जी।
3: तो यही कारण है कि आज विद्यालयों में भी बच्चों को शतरंज सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि भारत की बेटियां भी शतरंज की दुनिया में नई ऊंचाइयां छू रही है, और उनकी सफलता का यह संदेश देती है कि जब अवसर, मेहनत और आत्मविश्वास साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।
2: सखियों, दिन में कुछ मिनट शतरंज खेलना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना भी है। यदि पूरा परिवार साथ बैठकर शतरंज खेले तो आपसी संवाद तो बढ़ता है, साथ ही बच्चों की सोच जो है वो भी विकसित होती है, और मोबाइल पर हम सभी की जो निर्भरता बढ़ गई है वो कम होती है। तो आइए इस विश्व शतरंज दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने मन को स्वस्थ, शांत और एकाग्र रखने के लिए शतरंज जैसे ज्ञानवर्धक खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और अपने बच्चों को भी इसके लिए हम प्रेरित करेंगे।
3: और बहनों, आपके मन को सदैव एकाग्र, सकारात्मक और सृजनशील बनाए रखिए। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते हैं, परिवार के हर सदस्य की पसंद, उनकी सेहत और उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम अपने दिल का भी उतना ही ख्याल रखते हैं? अक्सर महिलाएं अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज कर देती है, अभी बहुत काम है, थोड़ी देर में आराम कर लूंगी, पहले बच्चों का काम कर लेती हूँ, ऐसा सोचते सोचते वे अपनी सेहत को पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन याद रखिए, स्वस्थ दिल ही स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव है ना संध्या?
1: बिल्कुल मीनाक्षी, पहले यह माना जाता था कि हृदय रोग केवल पुरुषों में अधिक होते हैं, लेकिन आज बदलती जीवन शैली, तनाव, अनियमित खान पान, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के कारण महिलाओं में भी हृदय रोग के जो जोखिम है वो भी उनका सामना कर रही है। इसलिए समय रहते सावधानी बहुत जरूरी है। बहनों, दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़े बदलावों की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों की जरूरत है। रोज कम से कम 30 मिनट हमें तेज कदमों के साथ चलना चाहिए, ताजे फलों का, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, अधिक नमक, तली भुनी चीजें, चीनी का हमें ज्यादा उपयोग करने से बचना चाहिए। साथ ही सखियों, अमृतमय पानी, इसका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए, कम से कम 3-4 लीटर, और पूरी नींद लेना है ना मीनाक्षी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सोने पर आपका शरीर और ज्यादा स्वस्थ होता है।
0: और इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी दिल से बहुत गहरा संबंध होता है। लगातार तनाव, चिंता और क्रोध हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इसीलिए बहनों, दिन में कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। योग, प्राणायाम, ध्यान, संगीत या फिर अपनी पसंद का कोई भी जो शौक होता है वो पूरा कीजिए। उससे आपके मन को सुकून मिलेगा और दिल भी इससे स्वस्थ रहेगा।
1: यदि सीने में दर्द, सांस फूलना, असामान्य थकान, चक्कर आना या बेचैनी जैसे लक्षण कभी भी महसूस हो तो उन्हें सामान्य कमजोरी समझकर ना टाले। समय पर डॉक्टर से सलाह लेना किसी भी बड़ी परेशानी से हमें बचा सकता है। सखियों, साथ ही ना परिवार की धड़कन है आप। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य को कभी भी आखिरी प्राथमिकता ना बनाए। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। सखियों,
0: बिल्कुल सखियों, तो आज से ही हम ये संकल्प लें कि अपने दिल की देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएंगे, संतुलित जीवन शैली अपनाएंगे और अपने परिवार को भी हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि दिल स्वस्थ रहेगा तभी जीवन की हर धड़कन खुशियों से भर जाएगी।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बहनों, हम अपने

0: सकियो, अब बारिश का सीजन भी आने वाला है, तो आप छोटे छोटे जैसे बीज होते हैं वो डाल दीजिए, तो नई नई कौपले खिलेगी, उसमें रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, और आपके आपने घर में है ना छोटी सी बगिया भी लगाइए।
1: बिल्कुल, इस तरह से जब हम छोटे छोटे पौधों को अपने घर में लगाएंगे, सजाएंगे, और बारिश के मौसम में तो ये बहुत जल्दी उग जाते हैं, है ना। तो ऐसी कोशिशें आप कीजिए, क्योंकि अब हमारी जो बगिया है उसे सजाने का समय आ गया है, और ये बारिश का जो आने वाला मौसम है ये बिल्कुल उपयुक्त मौसम है।
0: और अब ये समय आ गया है हमारा भी आपसे विदा लेने का, तो दीजिए विदा आपकी सखी मीनाक्षी स्वर्णकार और
1: संध्या ओझा को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिडडे न्यूज सुनेंगे और उसके बाद होगा दोपहर समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण

0: हवा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला। 2 लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में

0: श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुटको पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर

0: तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
1: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए खयाम के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है शाहिर ने। युगल स्वर है लता मंगेशकर और मुकेश का और फिल्म का नाम है

खयाम के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा था नक्श लायलपुरी ने, गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, फिल्म थी दर्द। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोरा मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए गीत को लिखा है आनंद पक्षी ने, संगीत आरडी बर्मन का, फिल्म का नाम है जुर्माना और गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रही हैं। लीजिए कार्यक्रम आप सुनिए। गुलजार के लिखे गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है घर।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म दुल्हन वही दुल्हन एक रात की। गीत को लिखा था राजा मेहदी अली खान ने और संगीत था मदन मोहन का। फिल्म संगीत का ये

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है अनजाने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लता मंगेशकर की गाई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल अमारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा के प्रसारणों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। संध्या के 5 बजने वाले हैं, हमारी संध्याकालीन सभा प्रारंभ होती है। आइए सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा कि श्री अब्दुल्ला ने भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि मजबूत हवाई संपर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का मजबूत आधार रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थिर रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हो चुके हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: पूरे दुनिया में इंसान ने खुद को महकाने के लिए और खुद को तरोताजा रखने के लिए कई तरह की खुशबुओं का ईजाद किया। कभी किसी फूल की पंखुड़ियों को पीस कर महीनों के इंतजार के बाद उससे एक महक उठाई और उसे इत्र कहा, तो कभी किसी आधुनिक प्रयोगशाला में बैठकर अल्कोहल में रसायन मिलाकर कुछ बनाया जिसे परफ्यूम कहा। इन सारी खुशबुओं से इतर एक खुशबू ऐसी और है दोस्तों, जो हर इंसान अपने जीवन के सबसे शुरुआती पहलुओं में महसूस करता है और जीवन के आखिरी पड़ाव तक वो खुशबू उसके साथ रहती है। और मजे की बात यह, उसे सबसे ज्यादा अच्छी भी लगती है। और उस पर भी ये बात यह कि वो खुशबू ना तो किसी फूल की पंखुड़ियों को पीस कर बनती है, ना किसी लैब में बनती है। वो खुशबू दरअसल उस जीव की होती है जो खुद को महर्षि दधीचि मानकर अपने सर्वस्व न्योछावर करके इस मानव जाति को उस सुगंध से रूबरू करवाता है। यानी खुशबू होती है उस पेड़ के कर्म की, उस पेड़ के बलिदान की जिससे कागज बनता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधव और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आकाशवाणी की बेहद ही विशेष पेशकश और आप सबका मनपसंद कार्यक्रम कार्यक्रम युवाणी।
1: दोस्तों, आज हम जिस खुशबू की बात कर रहे हैं उसे हर आदमी अपने जीवन में बचपन से ही महसूस कर लेता है। जीवन की बाल्यावस्था से ये खुशबू मिलना शुरू होती है और युवा अवस्था तक आते आते हमारे इर्द गिर्द बहुत बढ़ जाती है, लेकिन फिर एक दौर आता है जब हम इसे कहीं खो देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और दोस्तों, इस खोने की वजह है आज का आधुनिक दौर। चलचित्रों की वजह से, मोबाइल की स्क्रीन में खुद को बहुत ज्यादा खो देने की वजह से और इस पूरी दुनिया के डिजिटलाइजेशन की वजह से इंसान खुद को उस खुशबू से दूर पाता है और ये खुशबू जवानी में मानो कहीं गायब सी हो जाती है और फिर वापस मिलती है वृद्धावस्था में। आप समझ गए होंगे दोस्तों, जिस खुशबू की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि किताब के पन्नों की खुशबू है। जरा याद कीजिए, स्कूल की वो पुरानी

0: किताब या वो पुरानी कॉपी जो आपने बरसों पहले अपने घर की किसी अलमारी में या किसी छज्जे पर रख दी थी।
1: बहुत सही कहा तुमने प्रियंका। दोस्तों अभी भी जब ये रिसेंट दिवाली गई थी प्रियंका,
0: हाँ।
1: सफाई के दौरान जब भी कोई वो पुरानी किताब धूल फांकती हुई हाथ में आती है, ना जाने क्यों अचानक से अनायास ही उन पन्नों के अंदर इंसान खो करके रह जाता है,
0: है ना।
1: उन पन्नों से आने वाली खुशबू दोस्तों कुछ ही सेकंड के अंदर हमें मानो आज से सालों पहले टाइम मशीन की तरह वापस उस क्लास में पहुंचा देती है, जहां चौक था, बोर्ड था, बेंचेस थी, वो दोस्त थे जो हमसे मोहब्बत करते थे, जिनसे हम मोहब्बत करते थे और निस्वार्थ भाव से वो रिश्ता बनता था।
0: तुम्हारी बात से माधव मुझे भी मेरा क्लासरूम याद आ गया। लेकिन दोस्तों आज के दौर की सच्चाई थोड़ी अलग और डराने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार बढ़ते स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग की वजह से इंसान किताबों से इतना ज्यादा दूर होता जा रहा है कि अगर हम अतीत से तुलना करें तो उसके आंकड़े थोड़े चौंका देते हैं।
1: कैसे?
0: दोस्तों 70 के दशक में जहां हमारे देश का लिटरेसी रेट महज 34% हुआ करता था, तब भी लोग पत्रिकाओं या छायाचित्रों और किताबों के साथ रोज कम से कम 1 घंटा जरूर बिताया करते थे। और आज देखो माधव, आज ये समय सिमट कर सालाना केवल 16 घंटे रह गए।
1: भाई साहब बहुत बड़ा पता नहीं है। लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं ना प्रियंका,
0: हाँ।
1: तो अक्सर एक बात हमारे सामने आती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले यानी किताबों पर समय बिताने वाले जो लोग हैं वो भारत में है, यानी कि भारत इस लिस्ट में टॉप पर है। ये भी कहा जाता है, मैंने सुना है कि भारतीय हर हफ्ते ऑन एवरेज दोस्तों 10 घंटे 42 मिनट प्रति हफ्ता किताबों के साथ बिताते हैं।
0: हाँ माधव।
1: और इसके बाद अगर देखें तो थाईलैंड और चीन के नंबर आते हैं, जहाँ पर लोग लगभग 8 घंटे हर हफ्ते किताब पर बिताते हैं।
0: आंकड़े एकदम सही है माधव, लेकिन इसके पीछे का सच है ना थोड़ा सा ट्विस्टेड है।
1: कैसे?
0: ये जो 10 घंटे 42 मिनट का समय है, ये वो समय है जो हमारे युवा और बच्चे स्कूल या कॉलेज का सिलेबस पूरा करने के लिए बिताते हैं।
1: अच्छा।
0: ये परीक्षा पास करने की पढ़ाई है, जीवन को समझने की नहीं। और जरूरी नहीं कि किताब को केवल स्कूल का सिलेबस पूरा करने के लिए पढ़ा जाए। दोस्तों आपको एक और तथ्य से रूबरू करवाते हैं। जब हम पश्चिमी देशों की तरफ देखते हैं ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका, जिसमें एक आम व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो एक साल में औसतन 17 किताबों का अध्ययन करता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये किताबें उसके किसी कॉलेज या सिलेबस की नहीं होती,
1: ये किताबें होती है खुद को आगे बढ़ाने के बारे में,
0: हाँ।
1: आर्थिक उन्नति के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में, लिटरेचर के बारे में, कल्चर के बारे में, साहित्य के बारे में। दोस्तों यूरोपीय देशों में भी अगर बात करें ना अपन, प्रियंका स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग 81% से लेकर 75% तक की वहां की जो आबादी है वो रोजाना किसी सिलेबस की किताब नहीं पढ़ती, बल्कि अपने शौक से, उनका एक वो खुद का है कि हमें रोज किताब पढ़नी है और खुद से वो किताबें पढ़ते हैं।
0: देखो कितनी अच्छी बात है ना। और अगर हमारे यहाँ देखें तो अगर हम लाइब्रेरीज और इसकी बात करें तो देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, उसमें करीब 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद है। और ये हमारी एक बहुत बड़ी साहित्यिक विरासत है। देखो
1: प्रियंका, ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी कोलकाता में है और वो 2.5 लाख से ज्यादा रखती है, लेकिन इसका ना एक पहलू और है प्रियंका जो बहुत निराश कर देता है।
0: क्या?
1: वास्तव में जो लाइब्रेरीज थी वो थी किताब जहाँ पर संग्रह होता था, ज्ञान का भंडार होता था, लोग शांति चाहते थे पढ़ते थे। लेकिन आज आलम यह है दोस्तों कि हमारे गाँवों और शहरों की लाइब्रेरीज जो है वो किताबों के लिए नहीं जानी जाती, वो जानी जाती है सिर्फ किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए। वो लाइब्रेरीज जो है सिर्फ स्टडी रूम बन करके रह चुकी है, एसी वाले कमरे और बड़ी बड़ी बेंचें। बच्चे वहां जाते हैं, अपना टिफिन अपने साथ ले जाते हैं, सिलेबस की किताबें लेकर के जाते हैं, बैग खोलते हैं, टिफिन खोलते हैं, पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं। जबकि लाइब्रेरीज जो थी उनका जो मेन मोटो था उन किताबों के वास्तविक अस्तित्व से कहीं आगे था।
0: देखो माधव, तुम्हारी इसी बात से मुझे एक बात याद आई। दोस्तों आपने भी दो शब्द तो सुने होंगे, एक लिटरेसी यानी कि साक्षरता और इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता। 1971 में देश की साक्षरता दर लगभग 34% के करीब थी, जो कि फिलहाल बढ़कर 78% के करीब पहुंच गई है। तो गणित और आंकड़ों के हिसाब से तो भारत में किताब पढ़ने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए थी ना।
1: बात तुम्हारी सही है, लेकिन दोस्तों हुआ ठीक उल्टा। क्योंकि ना इस डिक्शनरी में जो लिटरेसी और इलिटरेसी है इसके अलावा एक और शब्द आया है, ए लिटरेसी।
0: ये ए लिटरेसी क्या होता है जरा बताओ।
1: ये एक बड़ी कमाल की नई चीज है दोस्तों।
0: अच्छा।
1: ये वो लोग होते हैं, मैं लोग में ये वो प्रजाति होती है जो पढ़ना जानते तो हैं लेकिन पढ़ना चाहते नहीं है। ये वो पीढ़ी है जो डिजिटल

0: किताबें, रील्स, छोटे वीडियोस या स्क्रीन पर चलते हुए टेक्स्ट को देखना ज्यादा कंफर्टेबल मानती है, ज्यादा सुविधाजनक मानती है। और इनडायरेक्टली कहूँ ना प्रियंका, तो ये हमारी ही पीढ़ी है सबसे ज्यादा। बजाय इसके कि वो अगर शांति से बैठ करके कहीं किताब को पढ़े तो उनके मन के अंदर तो शांति की लहरें व्याप्त होंगी, उनको छोड़ करके हम लोगों ने रील्स की तरफ जो अपना मुंह है वो ज्यादा मोड़ लिया।
1: बात तो कहीं ना कहीं सच्ची है माधव, हमने पढ़ने की क्षमता तो हासिल कर ली है लेकिन पढ़ने की आदत जो है ना वो हम लोगों ने खो दी है। साथियों, आज युवाणी के इस मंच से हमारी आपसे बस एक ही गुजारिश है, किताब पढ़िए। कोई नई किताब की जरूरत नहीं है, कोई आप पुरानी किताब भी निकाल कर पढ़ सकते हैं जो आपने कभी आधी छोड़ दी थी,
0: या फिर पिछले किसी साल का वो पुराना कैलेंडर उठा लीजिए जिसमें आपने कभी दूध का हिसाब लिखा था,
1: है ना,
0: या स्कूल की वो पुरानी रफ कॉपी उठा लीजिए जिसके आखिरी पन्ने पर आपने बचपन में छुप करके कोई कविता लिखी थी, कोई किस्सा लिखा था, उसे निकालिए, उसे पढ़िए
1: और उसको निकाल कर अपने घर के किसी शांत कोने में उसको लेकर बैठ जाइए और फिर आराम से पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आप सन्नाटे से रूबरू होंगे
0: और जब आप सन्नाटे से रूबरू होंगे, दो चार होंगे, तो अपने अंदर का शोर कम होगा, अंदर का शोर कम होगा तो डर कम लगने लगेगा। और दोस्तों, अगर डर कम लगने लगेगा तो आप खुद से और दुनिया से प्रेम करना सीखेंगे,
1: और जब प्रेम करना सीखेंगे तो बिगड़ते हुए रिश्ते सुधरना शुरू होंगे, जब रिश्ते सुधरेंगे तो ये जीवन अपने आप खुशनुमा बन जाएगा। आप देखेंगे, क्योंकि किताबों की दोस्ती दुनिया की सबसे अच्छी और निस्वार्थ दोस्ती होती है दोस्तों।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही कहा तुमने प्रियंका। और आज ही अपने किसी जैसे पुराने दोस्त से रब्ता वापस हाथ मिलाइए। और इसका एक पहलू और ये भी है प्रियंका,
1: हाँ?
0: कि समय की मांग के हिसाब से हमें जल्दी से किताबों से हाथ मिला लेना चाहिए,
1: है ना,
0: क्योंकि जो पेड़ खुद को महर्षि दधीचि मानकर हमारे हाथ में किताब थमाते हैं, वही पेड़ खुद को मजबूत मानकर हमारे पिताजी के हाथ में लकड़ी भी थमाते हैं।
1: ये तो सही बात है।
0: तो वो जो दूसरा पहलू है उससे हमें दर्द भी बहुत होगा, नुकसान भी बहुत होगा, और वो जो दूसरा पहलू उसमें झटका भी जोर का लगेगा।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों अब वक्त है कार्यक्रम में आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां रोज हम आपसे पूछते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स से जुड़े दो प्रश्न। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है,
1: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है।
0: और आपके लिए दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आपके लिए दोनों प्रश्न, इनके जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। अब रुकते हैं कुछ संदेश के लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
5: ब्रो, ये फटा है।
6: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
7: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
5: वाओ, नया नोट मिलेगा?
6: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
7: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: साथियों, किताबों की बातें बड़ी अच्छी होती है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको ज्ञान भी मिलेगा और वो खुशबू भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात को आसमान में रूप के साथ चमकने वाले जो चांद हैं, जिनके ऊपर कितनी गजलें, कितनी कविताएं, कितनी शायरियां, और अक्सर नई शादी के बाद जिसको सबसे ज़्यादा अपने वार्तालाप के अंदर संबोधित किया जाता है, उसके ऊपर कितनी खोज और कितना काम हमारा देश ने किया है।
0: चांद की बात सुनते ही माधव मुझे मेरे बचपन याद आ जाता है। बचपन में जो हमारे लिए दूर बैठे चंदा मामा हुआ करते थे, जिन पर हमारे नाना नानी, दादा दादी, इन्होंने कितनी कहानियां सुनाई हमको। और आज विज्ञान ने भी उस चांद के कई गहरे रहस्यों को खोलकर हमारे सामने रख दिया है। और आज हमारे युववाणी में हम चांद की बात करना हमारा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज यानी कि 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस भी है।
1: बिल्कुल, और श्रोताओं मैं ये भी बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के महत्व को दर्शाने के लिए मेनली इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। और आज ही के दिन यानी कि 20 जुलाई साल 1969 में इंसान ने पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर अपने कदम रखे थे। अपोलो 11 मिशन के अंदर आप सब जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद की सतह पर पहला कदम रखा था, तो उन्होंने ये बात अपने जुबान से, या मैं यूं कहूं उनकी ये वक्तव्य था वहां पर, कि ये जो कदम मैंने रखा है, ये एक इंसान का बहुत छोटा सा कदम है, लेकिन पूरी मानव सृष्टि के लिए, मानवता के लिए ये बहुत बड़ी छलांग है।
0: अपोलो 11 मिशन की ये बात तो माधव मुझे लगता है शायद सबको याद होगी। और हमारे भारत के लिए तो चांद का महत्व सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दोनों ही मायनों में देखो कितना गहरा है। एक तरफ करवा चौथ, ईद और शरद पूर्णिमा जैसे हमारे तमाम त्योहार चांद की चांदनी से जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ देखो जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो आज का

0: आज चांद का जिक्र होते ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
1: और होना लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि इसरो ने प्रियंका जो चांद के जिस हिस्से पर अपने तिरंगे की छाप छोड़ी है ना, आज तक दुनिया का कोई भी देश वहां पहुंच नहीं सका। और चंद्रयान 3 की ये ऐतिहासिक सफलता भले हम कैसे भूल सकते, बताओ विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव साउथ पोल पर लैंडिंग की थी दोस्तों, कोई देश वहां नहीं जा पाया। जिसे हम लोगों ने शिव शक्ति पॉइंट को नाम दिया और शिव शक्ति पॉइंट देकर के उस नाम को अमर कर दिया हमने।
0: बिल्कुल माधव, और वो पल हर भारतीय के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला था। याद करते ही भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि दृढ़ संकल्प के साथ अनंत अंतरिक्ष को भी छुआ जा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हमको याद दिलाता है कि इंसान की कल्पनाओं की कोई सीमा ही नहीं है। जो चांद कभी सिर्फ कहानियों का हिस्सा था, आज वही भविष्य के डीप स्पेस मिशन और रिसर्च का एक बड़ा बेस कैंप बनते जा रहा है।
1: मुझे तो प्रियंका पता है क्या लगता है,
0: क्या
1: कि विज्ञान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, आने वाले कुछ दशकों में हम और आप ये बातें करेंगे कि भाई पिकनिक कब जा रहे हैं चांद।
0: बिल्कुल
1: भाई, वो फलाने जी के जो बड़े वाले लड़के हैं वो तो अभी चांद पे घूमने गए हैं, वो फलाने जी की जो बेटी है वो उस ऑफिस में जो चांद पे है। थोड़े दिनों में ऐसी कहानियां हम सुनने लग जाएंगे। दरअसल चांद को अगर आप रात को चांद की रोशनी में बैठते हैं तो बेहद अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बैठते हैं तो दोस्तों आपको बैठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चांद शीतलता का प्रतीक होता है, जल तत्व का प्रतिनिधि होता है। चांद के पास, चांद को देखने से पास तो जाहिर सी बात है नहीं बैठ सकते, देखने से आपके मन में शीतलता व्याप्त होती है, आप बहुत सहज शांत और सरल महसूस करते हैं।
0: और इसके साथ ही दोस्तों चांद हमारी उम्मीद और विज्ञान की अनंत उड़ान का भी प्रतीक है। तो आसमान के इस चमकते चांद की अगर आप भी अपने सपनों के आसमान में बेखौफ चमकते रहिए और नई ऊंचाइयों को छूते रहिए।
1: बिल्कुल, और याद रखिए कि इस बार जब आप चांद को देखें तो ये बात आपके मन में आनी चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट ने भी कब कहा होगा कि जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है।
0: बिल्कुल।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: माधव, पता है कल मैं एक कैफे गई थी अपनी दोस्त के साथ में, और उस टाइम मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी। उसने इतना कॉन्फिडेंस अपना ऑर्डर दिया था ना कि एक मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वही कैफे की मालकिन है। और मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर दिया, उसके बाद मैं, मेरी दोस्त मेरे साथ में बैठी थी, तो हम बात कर रहे थे कि क्या ऑर्डर देना है। तो पहले 5 मिनट तक तो वो मेन्यू ही देख रही थी, उसके बाद में उसने सोचा कि क्या मंगवाना है। उसके बाद में ज्यादा उसका दिमाग काम किया नहीं, तो उसने क्या किया पता है, जो आगे वाले लोगों ने ऑर्डर दिया ना, उसने वही ऑर्डर दे दिया।
3: ये बहुत दफा ऐसा होता है प्रियंका हमारे साथ में, क्योंकि बार क्या होता है कि जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, जब खुद डिसाइड नहीं कर पाते ना क्या

0: हैं, तो क्या करते हैं, जो पास में जिस इंसान ने जो ऑर्डर दिया, अब भैया ये जो इन्होंने दिया ना वो पहले दे देते
1: हैं, सेम कर दो।
0: लेकिन है ना, पता है इसमें ना मुझे एक बात और लगती है प्रियंका,
1: क्या
0: कि सबसे अच्छी चीज ये है कि उस लड़की ने ऑर्डर इसलिए नहीं दिया कि उसे सबको इंप्रेस करना था, भाई उसने इसलिए दिया कि उसको क्या चाहिए था, व्हाट शी वांट्स, जो वो चाहती थी उसने वो चीज एक बार में धड़ल्ले से मंगवाई, ये बताता है कि कितना कॉन्फिडेंट है वो।
1: मुझे भी सबसे अच्छी बात ये लगी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना कंफ्यूजन के उसने इतना आराम से ऑर्डर दिया। और कुछ लोगों को, इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगता है कि जैसे इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इनको बहुत कुछ पता होता है।
0: लेकिन ना ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ खास होता है, हो सकता है कि ऊपर वहां पे पहली बार ही गई हो, बस फर्क इतना होता है कि उन्हें वास्तव में खुद पर भरोसा होता है, वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जितना जानते हैं ना वो हो सकता है कि उनके लिए सफिशिएंट है उस मोमेंट के लिए। लेकिन बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, वो उस ज्ञान को बिना परखे सिर्फ उस ज्ञान की अंदरूनी बातों में ही झिझक में रह जाते हैं, और झिझक में रहने से बात बोलते नहीं और उससे बात बनती नहीं है, पीछे रह जाते हैं।
1: तभी तो देखो हम में से ज्यादातर लोग यही तो करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पहले ही सोच लेते हैं कि हमसे अगर गलत हो गया तो, सामने वाला हंस दिया तो,
0: ये जो गलत हो गया, अगर ये जो सॉर्ट अगर आता है ना दोस्तों, ये हमें ऐसी हजारों आइडियाज और ऐसी हजारों प्लान्स हमारे दिमाग में खत्म हो जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा।
1: हाँ देखो ना, स्कूल के टाइम में भी याद करो, जब टीचर हमसे कोई क्वेश्चन पूछती थी और अगर हमारे मन के अंदर जवाब सही आता भी था उनको, लेकिन हाथ उठाने की कभी कभार हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि पता नहीं सही निकलेगा या नहीं,
0: और ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता था, भाई हमको आ रहा है लेकिन पास वाले इंसान ने अगर बोल दिया और हम चुपचाप बैठे रहे हमारी चीज की वजह से, फिर हमें लगता था यार आता था, बोल जाते तो भी कुछ मिल जाता।
1: देखो उस दिन समझ नहीं आता था हमको, हम बच्चे होते थे तब, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको जवाब नहीं आया, बस वो कॉन्फिडेंस था जो हमको नहीं आ रहा था उस टाइम पे, है ना।
0: एग्जैक्टली। और दोस्तों मजे की बात ये है कि जो बच्चे सबसे कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा बोलते हैं, जरूरी नहीं उन्हें सब कुछ आता ही हो, लेकिन कई बार उन्हें बस इतना भरोसा होता था कि भाई जितना आता है उतना ठीक है, और अगर कुछ नहीं आता है तो सीख लेंगे, गलत होगा तो ज्यादा ज्यादा क्या है, गलत हो जाएगा, सही चीज क्या है वो पता लग जाएगी।
1: हाँ, और मुझे लगता है माधव, एक कॉन्फिडेंस और जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इन दोनों के बीच में एक पतली सी लाइन है,
0: बहुत थिन लाइन,
1: यही डिफरेंस है कि कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं कोशिश करूंगी, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कोशिश करेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ये कहता है कि मुझे सब कुछ आता है
0: और यहाँ पर है ना सीखना बंद हो जाता है, क्योंकि जहाँ इंसान इस चीज के अंदर मुझे सब आता है, हम ब्रह्मास्त्र में, वहां पर इंसान की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूस एक्वायर जो नॉलेज है उस प्रोसेस में पीछे रह जाता है।
1: लेकिन माधव, हम लोग गलती करने से इतना ज्यादा डरते क्यों हैं?
0: क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं गलती मत करना, करोगे तो ये हो जाएगा, करोगे तो वो हो जाएगा।
1: जबकि देखो सच ये है कि कोई भी छोटे से छोटा काम देख लो, बचपन में देख लो, साइकिल चलाना हो, बड़े होकर गाड़ी चलाना हो, कोई स्किल सीखनी हो, कुछ नया काम सीखना हो, हर चीज में शुरुआत में छोटी मोटी गलतियां तो होती हैं
0: 100%।
1: और अगर उन गलतियों की वजह से हम रुक जाएं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, उन चीजों को सीखेंगे कैसे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ना पता है ये लगता है प्रियंका कि आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस कोई ऐसी नहीं है रात को सोए सुबह आपके अंदर आ जाएगा, ये एक प्रोसेस है, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है ना, वैसे ही ग्रेजुअली आपके अंदर आता है, आप कोई काम करते हो, हारते हो, सीखते हो, फिर आगे बढ़ते हो, हारते हो, सीखते हो, गलत होता है, फिर सीखते हो, ये इस प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर धीरे धीरे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है।
1: और इसीलिए दोस्तों आपको इस प्रोसेस के अंदर दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है, आप किसी और से अपनी तुलना करें, इससे अच्छा ये है आप अपने कल वाले खुद से अपनी तुलना कीजिए कि आज मैंने कितना इम्प्रूव किया है, है ना, क्योंकि अपने डर से कदम आगे बढ़ा लेना कई बार सफलता की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए अगर आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ इस डर से मत रुकिए कि लोग क्या कहेंगे।
0: देखो लोग तो प्रियंका कुछ कहेंगे, आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास ये तय करेगा कि आप उसे कहां तक सुनेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए दोस्तों, सीखते रहिए और पहला कदम उठाने से कभी मत डरिए।
1: लोग तो कहेंगे दोस्तों, और कुछ लोग अपने लिए राय बना लेते हैं इस वजह से कि मुझसे नहीं होगा, और कोशिश भी नहीं करते, अपने आप ही अपना पहले रिजल्ट डिसाइड कर देते हैं कि मुझसे तो वो ही नहीं पाएगा, चाहे इंटरव्यू देख लो, स्टेज पर बोलना हो या किसी इंसान से बात करनी हो। लगभग हर काम की शुरुआत में हम लोगों को डर तो थोड़ा सा लगता ही है।
0: बिल्कुल। और ये जो डर होता है ना दोस्तों, ये हमारे अंदर से निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब आप हमारी आर्म फोर्सेस को ही देखो, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ही देखो, आज अगर वो डरने लग जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा दोस्तों, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल माधव।
0: इसलिए जो बहुत जरूरी है, हम डरना बंद करें और कोई अच्छा आइडिया आए तो निडर होकर के उसकी शुरुआत करें।
1: और बात जब भारतीय सेना की, हमारी सेना की चल रही है, तो फिर हम पद्मश्री कैलाश खेर की आवाज में जो गीत है भारतीय सेना, उसे कैसे भूल सकते हैं।

0: लगता है जरूरी है सुनना।
1: चलिए दोस्तों सुनते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है

0: जो है ना अभी नीता मत्सुगा ना सुनी थी प्रियंका, तुम ये ऐसे फोटो अलग अलग मुंह क्यों बना रही थी मोबाइल में देख करके?
1: वो वीडियो देख रही थी, सोशल मीडिया पर लाइन चैलेंज चल रहा था, बिना फेस का एक्सप्रेशन चेंज किए नींबू खाने का चैलेंज था उनका।

0: मेरा फेस अलग अलग एक्सप्रेशन आने लग गया।
1: सोशल मीडिया कमाल है, खाया बिल्कुल मुंह बड़ा बन जाता है।
0: हाँ, लेकिन एक बात मैं सोच रही थी कि लोग इतने सारे नींबू खा लेते हैं उसके बाद नॉर्मल कैसे होते होंगे, क्योंकि नींबू तो केमिस्ट्री में पड़ा है ना, एसिडिक होता है।
1: बिल्कुल एसिडिक के लिए पानी पी लेते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं तो ज्यादा खट्टा महसूस होता है, तो उसके ऊपर एंटीडोट खा लेते हैं। ये स्केल याद करो, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था स्कूल के अंदर, कैसी कोई चीज कब पड़ता है, कब काम आता है, कुछ नहीं बता सकते। ये स्केल दोस्तों सिर्फ केमिस्ट्री की किताब तक सीमित नहीं है, बड़ा कनेक्शन है।
0: हाँ, देखो ना, 0 से 14 तक होता है, अगर पीएच 7 है तो उसको न्यूट्रल माना जाता है, जैसे कि शुद्ध पीने का पानी जो होता है हमारा, यानी कि, और 7 से अगर कम होता है तो फिर वो चीज एसिडिक होती है, 7 से ज्यादा है तो हमने पढ़ा था वो बेसिक होती है।
1: जितना कम पीएच एसिडिटी उतना ज्यादा, जैसे नींबू सिरका इमली और जैसे टूथपेस्ट है बेसिक नेचर के, बड़ी चीजें वो सारी बेसिक।
0: तभी तो मैड्स में एसिड की बातें ज्यादा होती है और इसीलिए दांतों की सफाई पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है।
1: बिल्कुल, मिट्टी के लिए भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट, हर फसल हर पीएच के अंदर नहीं लगाती, पीएच मिट्टी में बढ़ती है।
0: और सिर्फ इतना नहीं, स्विमिंग पूल के पानी का पीएच भी चेक किया जाता है, तो पानी इस्तेमाल करना सही रहे।
1: यही तो साइंस की खूबसूरती है प्रियंका, आप कोई चीज पढ़ते हो वो कई जगह काम आती है। एग्जाम के लिए हम साइंस पढ़े तो काफी पीछे रह जाते हैं। अब जैसे लेमिनेटिंग चैलेंज ही देख लो, हमें नहीं पता था कि हम इतनी बातें कर लेंगे सिर्फ इतनी सी चीज के ऊपर।
2: और अगर देखो ये लेमिनेटिंग जो चैलेंज है, अगर स्कूल में हमको मैम ये करके पढ़ाती ना तो कितना इंटरेस्टिंग लगता, बच्चे भाई देखो भूलते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अगर मैं ये लेमिनेटिंग चैलेंज करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बड़ा मुश्किल है विनर बनना इसमें।
2: माधव देखो, तुम विनर बनो या नहीं बनो, लेकिन तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस देखकर लोग जरूर एंटरटेन हो जाएंगे
1: भाई। पर मैं बहुत ज्यादा डिसएंटरटेन हो जाऊंगा, मेरे लिए बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सबसे इतर केमिस्ट्री, आप सबकी जिंदगी की केमिस्ट्री कैसी है, आपके जिनके साथ रिश्ते हैं वो कैसे हैं, वो तो अच्छे हैं ना, वो तो जरूर प्यार से भरे हुए हैं।

0: दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। वक्त है उन दोनों प्रश्नों के जवाब जानने का। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था,
1: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया,
0: जिसका सही जवाब है मॉरिशियस। हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था,
1: नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है।
0: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप दोस्तों, इसका सही जवाब है गुजरात। और अब वक्त है दोस्तों रोजगार सूचना का।
1: दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया आरआरबी की तरफ से, रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के अंदर 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया।
0: इसमें सभी आरआरबी को मिलाकर कुल पदों की संख्या 199 है,
1: जिसके आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क सभी आपको वहाँ पर विस्तृत जानकारी मिल जाएंगे।
0: और ध्यान रखिए, इसमें आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 14 अगस्त है, तो जल्दी अपने एलिजिबल

0: एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन कर दें।
1: बिल्कुल, और आजकल अगर ध्यान से देखें ना अपन तो ये सरकारी नौकरी का प्रचलन बहुत ज्यादा है। किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, एक तो इतने सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं और किसी भी टाइम चले जाइए मोटी मोटी किताबों के साथ मिलते हैं और लगता है कि कैसे ये लोग इतनी किताबें पढ़ लेते हैं।
0: ऐसा लगता है माधव जैसे ये एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का दूसरा घर ही लाइब्रेरी बन जाता है ना। देख कर भी कई बार आश्चर्य होता है कि इतनी देर तक ये कंटिन्यू बैठ कैसे जाते हैं एक जगह, इतनी मोटी मोटी बुक्स देखकर अपने आप को मनाते कैसे हैं कि इतना सारा कुछ पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी चुनौती जो है ना दोस्तों वो दरअसल इसमें सिलेबस करना कवर करना नहीं है प्रियंका, मोटिवेटेड रहना है। यात्रा बहुत लंबी है, आरपीएससी यूपीएससी कंपिटेटिव एग्जाम कोई भी लो बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है
0: और सवाल ये बन जाता है कि आखिर क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे हो पाएगा। और यहीं से तो असली तैयारी शुरू होती है क्योंकि एग्जाम सिर्फ किताबों का नहीं पेशेंस कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस का भी होता है दोस्तों।
1: बिल्कुल, और स्पेशली जब ये बात राजस्थान में आती है ना तो आरपीएससी से कईयों के सपने जुड़ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, स्कूल लेक्चरर बनना हो, सारे रास्ते आरपीएससी से होकर जाते हैं।
0: बात अगर आरपीएससी की करें तो इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। 20 अगस्त 1949 को स्थापित हुआ राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के

0: फिर तक ये कंटिन्यू बैठ कैसे जाते हैं एक जगह, इतनी मोटी मोटी बुक्स देखकर अपने आप को मनाते कैसे हैं कि इतना सारा कुछ पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे?
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी चुनौती जो है ना दोस्तों, वो दरअसल इसमें सिलेबस करना, कवर करना नहीं है प्रियंका, मोटिवेटेड रहना है। यात्रा बहुत लंबी है, आरपीएससी यूपीएससी कंपिटेटिव एग्जाम कोई भी लो, बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है।
0: और सवाल ये बन जाता है कि आखिर क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे हो पाएगा, और यहीं से तो असली तैयारी शुरू होती है, क्योंकि एग्जाम सिर्फ किताबों का नहीं, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस का भी होता है दोस्तों।
1: बिल्कुल, और स्पेशली जब ये बात राजस्थान में आती है ना, तो आरपीएससी से कईयों के सपने जुड़ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, स्कूल लेक्चरर बनना हो, आर एस, सारे रास्ते आरपीएससी से होकर जाते हैं।
0: बात अगर आरपीएससी की करें तो इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। 20 अगस्त 1949 को स्थापित हुआ राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और चयन परीक्षाओं को आयोजित कराता है। और मुझे लगता है कि आरपीएससी की तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं होती, इसमें पेशेंस भी सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन भी और कंसिस्टेंसी भी।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक दो दिन में होता नहीं ना काम, काफी महीने काफी सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है लगातार।
0: और इस दौरान सबसे मुश्किल काम शायद पढ़ाई नहीं, अपने आप को मोटिवेट रखना ही होता है, जैसा तुमने अभी कहा।
1: बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इसमें जो लोग है वो पेशेंस बनाए रखें और किताबें सबसे ज्यादा पढ़ें, क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा सीख देती है।
0: और दोस्तों उनको पता चल जाता है कि किस समय उनकी कंसंट्रेशन सबसे अच्छी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करनी है और कब
1: थोड़ा ब्रेक
0: लेना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, अगर एक गलती स्टूडेंट्स अगर कोई करता है और अगर वो बहुत ज्यादा समय तक उसी गलती को रिपीट करता रहता है, तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो बहुत भारी होता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जो आप हैं ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमें ना प्रियंका, स्पेशली हमारी एज के जो लोग हैं, उन्हें एक चीज सेलेक्ट कर लेनी चाहिए और उसके ऊपर ही पढ़ाई करती रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कुछ ही समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और आप बच्चे जो इतने भी हमारे घर में हम सब सुनते ही आते हैं, पापा हमेशा से कहते हैं कि हमारा जो बेटा है बड़ा होकर के हमारा नाम करेगा, हमारा काम करेगा।
0: बिल्कुल।

आंखों में बाहर से आ जाती है एक पिता के, जो उसका बेटा सफल होता है या बेटी सफल होती है। और बहुत जरूरी है कि आज हम इसकी अहमियत को समझें और सफलता करें। सफलता जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी ही वनस्पतियों और जानवरों के लिए भी जरूरी है। अपने आसपास की वनस्पतियों का ख्याल रखते रहें दोस्तों, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते रहें, मानसून है प्रकृति से जरूर प्रेम करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पेड़ लगाएं। अपनों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, जीव जंतुओं का ख्याल रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर इसी समय इसी फ्रिक्वेंसी पर कल, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी संध्या 6:05 पर हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही गीतकार। आज के गीतकार होंगे योगेश।

ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत संध्या 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज आप विविध विषयों पर चर्चा और लोकगीत और लोक भजनों के अलावा सुनेंगे डॉक्टर दीपाली धवन से ली गई भेंट वार्ता। विषय रहेगा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। इनसे बातचीत करेंगे श्री संदीप कुमार पारिक, प्रस्तुति श्री रेवत राम लेघा की होगी और उस कार्यक्रम का संयोजन करेंगे श्री अमित सिंह। हमारे श्रोता सुगम संगीत सुन सकते हैं संध्या 7:45 पर।

संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा के अंतर्गत रात्रि 8 बजे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

हमारे श्रोता फिल्म संगीत सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। लोक संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 8:30 पर।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म गीतों का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि 10:13 पर आप सुनेंगे लोक संगीत और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत।

0: ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय संध्या के 6 बजने को है। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे 5वीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की

0: जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की आठवीं बैठक आज से हो रही है। दो दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। इस समय संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत और आज इसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही गीतकार। आज के गीतकार हैं योगेश। तो योगेश का लिखित कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। इसे संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने। फिल्म का नाम है मिले और गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और साथियों ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: एक ही गीतकार कार्यक्रम में आइए सुनते हैं योगेश का ही लिखा एक और गीत। स्वर यशोदास का है, फिल्म का नाम है सफेद झूठ।

0: पहले।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में फिल्म आनंद का ये गीत। गीत लिखा था योगेश ने। योगेश का ही लिखा एक और गीत सुनिए। फिल्म का नाम है आनंद महल। स्वर यशुदास का है।

रंगमहल। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, स्वर यशोदास का था, गीत लिखा था योगेश ने। एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म रजनीगंधा का ये गीत। गीत को स्वर दिया है मुकेश ने और गीत को लिखा है योगेश ने।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम पेश किया। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आएगी। प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि बढ़ी। कल से 31 अगस्त तक फॉलोअप कैंप लगेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित रही। और राज्य में बरसात की गतिविधियां एक बार फिर शुरू। इस सीजन में अब तक करीब 21% कम बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में आज पेश किए गए शपथ पत्र के अनुसार प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इस शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने कहा कि इसके बाद सरकार को चुनाव कराने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढ़ा की याचिका पर दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इसके बाद 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 17 अगस्त को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 20 सितंबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव की अधिसूचना 23 सितंबर को जारी होगी और इन्हें 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को लेकर समय सारणी भी अदालत में पेश की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज उन्नति की बैठक ली। मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई इस बैठक से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में चल रही विकास परियोजनाओं और जनहित के कामों की प्रगति की समीक्षा की। श्री शर्मा ने राजस्थान संपर्क और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर मिली शिकायतों में कई परिवादियों से सीधे बातचीत की। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को हर प्रकरण का जवाबदेही के साथ समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में आमजन को राहत देने के लिए चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त

0: तक करने का निर्णय लिया गया। इससे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके अनुसार 21 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रदेश भर में फॉलोअप कैंप लगाए जाएंगे। इनके जरिए लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर लोगों को विभिन्न सेवाओं का फायदा पहुंचाया जाएगा। उदयपुर जिले के कुछ बच्चों को अवैध रूप से तमिलनाडु ले जाते हुए गोवा से बरामद किया गया है। इसके बाद पुलिस और बाल कल्याण समिति की मदद से उन्हें वापस लाया गया। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के नाम पर राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था। मामले में तथाकथित रूप से धर्मांतरण के आरोप भी सामने आए हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के इन कथित मामलों से क्षेत्र का सौहार्द बिगड़ने का भी खतरा है।
1: कि अवैध तरीके से बच्चों को मानव तस्करी के लिए तमिलनाडु ले जाया जा रहा था, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और इसकी सूचना लगातार आ रही है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कानूवाड़ा में एक FIR हुई जिसमें 11 लोग अरेस्ट हुए, उसमें से एक व्यक्ति नेपाल का है, एक पंजाब का है और बताते हैं कि नेपाल वाले में कोई पाकिस्तानी भी सम्मिलित था। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी 3 लोग थे। ये लोग क्षेत्र में आते हैं, छद्म तरीके से रहते हैं और लोगों में अलगाव पैदा करते हैं।
0: प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज तीर्थ यात्रियों का दल काठमांडू के लिए रवाना हुआ। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर से तीर्थ यात्रियों की इस बस को नई दिल्ली हवाई अड्डे के लिए हरी झंडी दिखाई। ये दल काठमांडू की हवाई यात्रा करेगा और वहां पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन सहित अन्य स्थलों का भ्रमण करेगा। राजधानी जयपुर में इस साल दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले लोक मंथन कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू की गई है। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज बैठक ली। पर्यटन भवन में हुई इस बैठक में लोक मंथन आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान देश विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों की सुरक्षा और अन्य इंतजामों पर भी विचार विमर्श किया गया। मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोक मंथन सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं और राष्ट्र चिंतन का महाकुंभ है। इसका 5वां संस्करण 4 से 6 दिसंबर को जयपुर में होने जा रहा है।
2: बहुत कुछ होगा, बहुत सारे विचार भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे अकेडमिशियंस को, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी वो बात भी रख सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला है इससे पहले, लेकिन जो पहले के लोक मंथन हुए हैं उनके माध्यम से उनको पद्मश्री तक मिला है। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक पहचान मिलना, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई लगातार बाधित रही। नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग पर हुए शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई, जिसे बाद में कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के शोरगुल के बीच ही लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य न्यायाधीशों की संख्या की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सक्रिय मॉनसून की तरह संसद का सार्थक सत्र पूरे देश के लिए लाभकारी होता है। प्रधानमंत्री ने पिछले एक महीने की भारत की उपलब्धियों पर गर्व जताया। श्री मोदी ने कहा कि देश में युवाओं को अनुकूल वातावरण मिल रहा है, इससे नवाचार और उद्यमिता को नई गति मिली है।
3: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो सत्य चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं।

0: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में बनने वाले सैनिक स्कूल की आज आधारशिला रखी। हाथीखेड़ा में ये राजकीय बालिका सैनिक स्कूल करीब 20 एकड़ क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बनने वाले इस स्कूल में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, खेल मैदान सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। श्री मौके पर देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। इस स्कूल का निर्माण कार्य करीब 15 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। कोटा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब डिजिटल परामर्श व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इन संस्थानों में ई प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इससे मरीजों को अस्पताल में लाइन लगने और कागजी पर्ची बनवाने से मुक्ति मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रोगी को डिजिटल टोकन नंबर दिया जाएगा। ओपीडी में तैनात चिकित्सक बीमारी, जरूरी जांचों और दवाओं का ब्यौरा सीधे ऑनलाइन दर्ज करेंगे, जिससे पूरा विवरण मरीज के आभा हेल्थ कार्ड से जुड़ जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया गया है। इसके तहत अधिक जोखिम और गंभीर स्थिति वाली प्रसूताओं की देखभाल के लिए विशेष यूनिट शुरू की गई है। इस इकाई में जटिल चिकित्सकीय स्थिति वाली प्रसूताओं की सभी जांचें विशेषज्ञ डॉक्टरों की सतत निगरानी में होगी। इस इकाई में मुख्य जाँचों की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। हाड़ौती क्षेत्र के खानपुर, पनवाड़ और सांगोत के किसानों को राहत मिली है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की पहल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भवरासा बांध से हरीशचंद्र सागर परियोजना की नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे धान की फसलों को बचाने की उम्मीद बढ़ गई है। श्री नागर ने बताया कि बारिश की कमी से ये फसलें सूख रही थी, पानी से इन्हें नया जीवन मिला है।
1: पर लगभग ज्यादा तो किसान धान करते हैं, वहाँ नदी के प्रवाह से जो पानी आता है उससे वो धान खाते, और वो केवल नहर इस बरसाती नहर है, और उसमें इस बार पानी नहीं आने से किसानों ने धान तो उसमें रुपाई कर दी, लेकिन वो जो सूख रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि ये धान अगर हमारी बचाना है तो हमें भवरासा डैम से पानी छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए सही बात को, और ये बहुत बड़ी राहत हमारे झालावाड़ क्षेत्र का, खानपुर का, पनवाड़ क्षेत्र है, हमारा सांगोद का जो बोरिना, अमृतकुआ, किशनपुरा वगैरह की पंचायत है, उन सब किसानों को राहत मिलेगी।
0: राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक करीब 21% कम बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार सामान्य 145 मिलीमीटर बरसात के आंकड़े के मुकाबले अब तक 113 मिलीमीटर पानी ही बरसा है। 24 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, वहीं 15 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। सिर्फ बीकानेर और चूरू में ही सामान्य से अधिक पानी बरसा है। हालांकि प्रदेश में एक बार फिर बरसात की गतिविधियों के सक्रिय होने से मानसून का दूसरा चरण शुरू हो गया है। भरतपुर जिले के कई इलाकों में आज झमाझम पानी बरसा। बुसावर, वैर, बयाना और नदवई में जोरदार बरसात हुई और ठंडी हवाएं चली। उधर डीग में भी सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। धौलपुर में भी बीती रात से शुरू हुआ हल्की बरसात का दौर रुक रुक कर आज भी चलता रहा। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही से मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज और कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं 22 और 23 जुलाई से इन संभागों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। इस बीच प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अच्छी बरसात की कामना के लिए लोग आस्था से जुड़ी परंपराएं निभाई जा रही है। इसी कड़ी में डूंगरपुर में आज पारंपरिक जुलूस निकाला गया और लोकगीतों के साथ अच्छी वर्षा की प्रार्थना की गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में हाल ही में पदोन्नत हुए अधिकारियों से मुलाकात की। लोकभवन में उन्होंने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस पर श्री बागड़े ने उन्हें बधाई और शुभकामना दी, साथ ही उनसे ईमानदारी, सेवा और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में प्रस्तावित कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम पेश किया। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आएगी। प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि बढ़ी। कल से 31 अगस्त तक फॉलोअप कैंप लगेंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित रही और राज्य में बरसात की गतिविधियां

0: एक बार फिर शुरू। इस सीजन में अब तक करीब 21% कम बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। पिछले महीने सीकर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जनकल्याण, पर्यावरण और प्रशासन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सीकर जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि यमुना जल परियोजना का MOA होना रहा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA किया गया। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। योजना में हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए शेखावटी क्षेत्र, सीकर, चूरू और झुंझुनू तक पानी पहुंचाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शेखावाटी ज्ञान सभा में शिरकत की। कार्यक्रम का विषय शिक्षा, संस्कार और विकसित भारत रहा। श्री बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि नीट 2026 के परिणामों में राजस्थान का प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत उत्कृष्ट रहा है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, फिर भी इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। जिला न्यायाधीश रूपा गुप्ता के निर्देश पर सीकर जिला मुख्यालय के निजी छात्रावासों की जांच के आदेश जारी किए गए। जिला प्रशासन को छात्रावासों के पंजीकरण, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, छात्र सुरक्षा और अन्य निर्धारित मानकों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए 15 जुलाई से स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बैठकें आयोजित कर चिकित्सा अधिकारियों, ANM और आशा सहयोगिनियों को प्रत्येक गर्भवती महिला की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की समय पर पहचान कर अलग से निगरानी रखने और सभी जांचों का रिकॉर्ड अद्यतन रखने पर भी जोर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों को आयोजन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाने के लिए प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों ने नर्सरी का भ्रमण किया। उन्हें पौध तैयार करने की प्रक्रिया, पौधरोपण की विधि और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, ध्वज शिष्टाचार और अन्य विषयों का भी अभ्यास कराया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है। इसके माध्यम से लाभार्थी अपने आवेदन और भुगतान की जानकारी व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के संबंध में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन माध्यम से भी सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन में शैक्षणिक सत्र 2027-2028 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। जिले के कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। विद्यालय प्रशासन के अनुसार चयन परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित होगी। मॉनसून के दौरान संभावित जलभराव की स्थिति को देखते हुए नगर परिषद ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें पंप हाउसों के संचालन, जल निकासी, सड़क मरम्मत, जर्जर भवनों की पहचान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्य सरकार हाई कोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव रो प्रस्तावित कार्यक्रम पेश किन्नो। ओबीसी आयोग री रपट 5 अगस्त ताई मिलेला। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां री मियाद बधी, काल 31 अगस्त ताई फॉलो अप कैंप लगाया चावेला। संसद रा पावस सत्र रा पहला दिन री कार्रवाई में विपक्ष रा सदस्यां रा हंगामा रा कारण अड़चन आई। और राज्य में बिरखा ओजो शुरू हुई, मौजूदा रुत में हाल ताई करीब 21% कम में बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में पंचायतों और स्थानीय निकायों रा चुनाव रो काम 15 नवंबर ताई पूरो कर लियो चावेला। इमारा में आज राज्य सरकार री ओरू राजस्थान हाई कोर्ट में हलफनामा

0: 21 फीसदी कम है बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में पंचायतां और स्थानीय निकायां रा चुनाव रो काम 15 नवंबर ताई पूरो कर लियो चावेला। इबारा माए आज राज्य सरकार री ओरू राजस्थान हाई कोर्ट माए हलफनामो पेश करी चियो। इ पाछे गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढारी अर्जी माथे सुनवाई करता थका हाई कोर्ट रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित री खंडपीठ कहो के ई मियाद पाछे सरकार ने चुनाव करावण सारू और बगत नी दियो चावेला। राज्य सरकार री ओरू महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शपथ पत्र अदालत सामी पेश कीनो। महाधिवक्ता कहो के 5 अगस्त ताई ओबीसी आयोग री रपट पेश करती चावेला। वे बतायो के इं पाछे राज्य निर्वाचन आयोग री ओरू 17 अगस्त ने निकाय चुनाव री अधिसूचना जारी करी चावेला और 20 सितंबर ताई चुनाव करा लिया चावेला। पंचायत चुनाव री अधिसूचना 23 सितंबर ने जारी करी चावेला और 15 नवंबर ताई पंचायत चुनाव रो काम पूरो कर लियो चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राज उन्नतियों जुड़िया कामकाज रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे प्रदेश माए चाल रहा विकास रा कामा और जनता रा भला रा कामा री प्रगति रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए जायजो लीनो। श्री शर्मा राजस्थान संपर्क पोर्टल और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल माथे शिकायत करण वाला हुई सीधी बातचीत कीनी। मुख्यमंत्री संबंधित अहलकारा ने हर मामला रो जवाबदेही सागे टेम सर निपटारो करण रा हुकम दीना। मीटिंग रे दौरान राज्य माए जनता रा काम आसानियों करावण सारू चलाया जा रहा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां री मियाद बधार 31 अगस्त ताई करण रो फैसलो करी चियो। इन तहत कालू 31 अगस्त ताई आखा राज्य माए फॉलो अप कैंप लगार मामला निपटाया जावेला। उदयपुर जिला रा कुछ बच्चा ने गैर कानूनी तौर तमिलनाडु ले जावण री भगत गोवा उ छुड़ाई चिया है। ई पाछे पुलिस और बाल कल्याण समिति री मदद उ वन पाछा लाई चिया। आम बच्चा ने भणाई लिखाई रा नाम पर राज्य उ बाहर ले जावण और कथित तौर उ वारा धर्म माए बदलाव री कोशिश री शंका जताई ची है। उदयपुर रा सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खत लिखकर ई मामला री आला दर्जा री जांच करावण री मांग कीनी है। कागज माए रावत कथित मानव तस्करी रा ई मामला हल्का माए भाईचारा रो माहौल बिगड़बा री शंका जताई
1: कि अवैध तरीके से बच्चों को मानव तस्करी के लिए तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है और इसकी सूचना लगातार आ रही है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कानूवाड़ा में एक एफआईआर हुई है जिसमें 11 लोग अरेस्ट हुए, उसमें से एक व्यक्ति नेपाल का है, एक पंजाब का है और बताते हैं कि नेपाल वाले में कोई पाकिस्तानी भी सम्मिलित था। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी 3 लोग थे। ये लोग क्षेत्र में आते हैं, छद्म तरीके से रहते हैं और लोगों में अलगाव पैदा करते हैं।
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज यात्रुओं रो दल नेपाल री राजधानी काठमांडू सारू रवाना भयो। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत जयपुर यात्रुओं री ई बस ने नई दिल्ली हवाई अड्डा सारू रवाना कीनी। ओ दल हवाई जहाज रे जरिए काठमांडू पुगेला जठे पशुपतिनाथ मंदिर रा दर्शन सागे दूजी ठौड़ा रो दौरो करेला। राजधानी जयपुर माए ई साल दिसंबर महीना माए लोक मंथन कार्यक्रम रखो जावेला। इन री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। मीटिंग माए लोक मंथन आयोजन री रूपरेखा और व्यवस्थावां रा बारा माए चर्चा करी ची। इस दौरान देश परदेश आवण वाला नुमाइंदा ने हिफाजत और दूजा इंतजाम रे बारा माए विचार करी चियो। ध्यानजोग है कि सांस्कृतिक विविधता परंपरावां और राष्ट्र चिंतन रा कार्यक्रम लोक मंथन रो 5वो संस्करण 4-6 दिसंबर ताई जयपुर में फैला।
2: बहुत कुछ होगा, बहुत सारे विचार भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे अकेडमिशियंस को, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी वो बात भी रख सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला है इससे पहले, लेकिन जो पहले के लोक मंथन हुए हैं उनके माध्यम से उनको पद्मश्री तक मिला है। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक पहचान मिलना, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होगा।

0: आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। संसद रा पावस सत्र रा पहला दिन आज विपक्ष रा सदस्यां रा हंगामा रा कारण कार्रवाई में अड़चन आई। नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा रा मामला माथे चर्चा री मांग करता था का करी जा शोर शराबा बीच है। लोकसभा और राज्यसभा री कार्रवाई कई दफा टालनी पड़ी, जिन्ने बाद माए काल ताई टाल दी री जी। लोकसभा में विपक्षरा सदस्यां रा शोरगुल बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की तादाद बढ़ावन रो बिल पेश कीनो। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026 रो मकसद जजां री तादाद मौजूदा 33 हूं बधार 37 करनो है। सत्र शुरू होवणो पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के सक्रिय मॉनसून री भांत संसद रो सार्थक सत्र पूरा देश सारू फायदेमंद फै है। प्रधानमंत्री देश का न्यू लारला एक महीना माय हासिल करी जी उपलब्धियां माथे गर्व जतायो। श्री मोदी कहो के देश माय नौजवानों ने बरकत सारू जरूरी वातावरण मिल रहो है, जिनू नुआ काम करण और उद्यमिता ने बढ़ावो मिलियो है।
1: जहाँ तथ्य होते हैं, जहाँ तर्क होते हैं, वहाँ तूफान के लिए जगह नहीं होती। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो सत्य चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूँ।
0: अजमेर रा हाथी खेड़ा माए टाबरिया सारू सैनिक स्कूल खोलियो चावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज इनरा काम री नींव रखी। ई मौके श्री देवनानी कहो कि राज्य सरकार बजट माय इनरो ऐलान की नो हो और ओ स्कूल लगभग 15 महीना माय बन जावेला। समग्र शिक्षा अभियान रा तहत करीब 20 एकड़ हल्का माय बनाया जावन वाला ई सैनिक स्कूल रा काम मत है लगभग 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आवेला। आ स्कूल खुलिया पाछे अजमेर देश माए लड़कियां री सैनिक स्कूल वाला कुछ चुनिंदा शहर माए भेड़ो भेजावेला। कोटा जिला रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माए अब डिजिटल परामर्श व्यवस्था ही मुहैया कराई जावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग आ संस्थान माए ई प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था लागू करण रो फैसलो कीनो है। इनु मरीजा ने अस्पताल माए लेना माए लाग और पर्ची बनावन री जरूरत नहीं पड़ेला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रजिस्ट्रेशन काउंटर माथे मरीजा ने डिजिटल टोकन नंबर दियो जावेला। ओपीडी माए डॉक्टर बीमारी जरूरी जांचा और दवाइयां रो ब्यौरो ऑनलाइन दर्ज करेला। इनु मरीजा की पूरी जानकारी आभा स्वास्थ्य कार्ड नु जुड़ जावेला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा राज्य निदेशक डॉक्टर जोगाराम इबारा माए हुक्म जारी करती ना है। भीलवाड़ा रा महात्मा गांधी अस्पताल माए घना जोखिम वाला गंभीर हालात वाली नुओ जापो वेवन वाली मायड़ा री सार संभाल सारू खास यूनिट बनाई ची है। ई यूनिट माए एड़ी मायड़ा री सगली जांचा विशेषज्ञ डॉक्टरां री लगातार निगरानी माए करी जावेला। ई इकाई माए खास जांचा 24 घंटा करी जावेला। हाड़ौती हलका रा भंवरासा बंधाऊ हरीश चंद्र सागर परियोजना री नहरा माए पानी छोड़ियो जा रियो है। इनु खानपुर पनवाड़ और सांगोद रा किसाना री धान री साख बचावन री उम्मीद बध की है। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर बतायो के बारिश री कमियो सूखन लागी साखा ने इनु नुवी जिंदगी मिली है।
2: पर लगभग ज्यादा तो किसान धान करते हैं, वहाँ नदी के प्रवाह से जो पानी आता है उससे वो धान साथ, और वो केवल नहर इस बरसाती नहर है, और उसमें इस बार पानी नहीं आने से किसानों ने धान तो उसमें रुपाई कर दी, लेकिन वो जो सूख रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि ये धान अगर हमारी बचाना है तो हमें भौरासा डैम से पानी छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए सिंचाई विभाग को, और ये बहुत बड़ी राहत हमारे झालावाड़ क्षेत्र का, खानपुर का, पलवाड़ क्षेत्र है, हमारा सांगोद का जो बोरिना अमृतपुआ किशनपुरा वगैरह की पंचायत है, उन सब किसान को राहत मिलेगी।
0: चूरू जिला में तारानगर रा प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश स्वामी राष्ट्रीय बागवानी मिशन रा तहत फलां रो बगीचो लगार खेती रो कामयाब मॉडल विकसित कीनो है। वे कहो कि इनु खेती में खर्चो कम वेवन सागे उपज बधी है।
3: मैंने यहाँ अपने खेत में लगभग

0: 12 बीघा में अनार के पौधे लगा रखे हैं, 2 बीघा में किन्नू है, मौसमी है, और उसके अलावा 6 बीघा में खजूर भी लगा रखे हैं। इस प्रकार से हम लोग परंपरागत रूप में और जैविक खेती के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं।
1: अरब मौसम राज्य में मौजूदा चौमासा ऋतु में हाल तक करीब 21 फीसदी कम में बरसियो है। हालांकि प्रदेश का कई हल्का में बिरखा ओजू शुरू फेंकी है। भरतपुर जिला रा भुसावर वायर बयानार नदबाई माए झमाझम बारिश हुई। डीग माई समारे हुई छंटो छिटको फेरियो है। धौलपुर माए बीती रात शुरू हुई हल्की बरसात रो दौर रुक रुक कर आज ही चालतो रहो। ये बीच चौखी बरसात री कामना सागे डूंगरपुर माए आज पारंपरिक जुलूस निकाली जियो और लोक गीता सागे चोखा में सारू प्रार्थना करी जी। आखिर माए खास समाचार एक फेरु सुन ली रहो। राज्य सरकार हाईकोर्ट माए पंचायत और निकाय चुनाव रो प्रस्तावित कार्यक्रम पेश कीनो। ओबीसी आयोग री रपट 5 अगस्त ताई मिलेला। प्रदेश माए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां री मियाद बधी। कालू 31 अगस्त ताई फॉलोअप कैंप लगाया जावेला। संसद रा पावस सत्र रा पहला दिन री कार्रवाई माए विपक्ष रा सदस्यां रा हंगामा रा कारण अड़चन आई। राज्य माए बिरखा ओजू सरूफी। मौजूदा ऋतु माए हाल ताई करीब 21 फीसदी कम में बरसियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7 बजे अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला जितना भी किसान भाई बहन है आप सभी ने आप रोहित अनुसाथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और अनिल सिंह खिचड़ा घना घना राम राम नवामी भाई राम राम। और सुनाओ देखो अपनी जकी खेती बाड़ी है जकी नई तकनीक आई है और अबार जकी बिरखा रही है वह पे कोई नई बातचीत जकी थे ले रहे हो मेरे बारे में बताओ सुनाओ।
0: देखो सर जुलाई महीना चल रहा है और ई माह क्या है खरीफ फसलों इस वास्ते सबसे मोटो बखत है। ई दौरान फसलों की बुवाई धान की रोपाई निराई गुड़ाई और पानी की निकासी का काम मोटा मोटी हो सी बिरखा हो गया शुरू होगी भी है तो मौसम और मिट्टी नमी ने देखता थका कृषि कार्य रो बगत माथे पूरा करना जरूरी है जनी बम्पर पैदावार होवेला नहीं तो खाली बैठा रहे पछ बा कह करनी के चिड़िया चुग गई खेत
1: बाद में सिर्फ क्या होता
0: अच्छा कहीं होना की गुण होना ये वास्ते खरीफ फसल की बुवाई और रोपाई में ध्यान देवो धानरी नर्सरी तैयार होने पछे इन्हें रोपाई करी जावे संकर हाइब्रिड और बासमती किस्मारी रोपाई के खातिर ओ बखत भी उत्तम है।
1: और मेरे सागे सागे डॉक्टर साहब आपने जकी खेती बाड़ी करा वे में कतार सु कतार री जकी दूरी है वे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आपना जका किसान भाई बहन है वे बरानी खेती ज्यादा कर करया करे तो बरानी खेती में जकी बिरखा होते ही आप जकी फसलारो बीजान है वो करनो नहीं भूला और मैंने टाइम सिर करा और जको बीजोपचार भी वो कर बीजा ताकि अपनी फसला में जकी व्याधियां है कीट है वे कम से कम आप असर डाल सके और अपनी ज्यादा पैदावार हो सारे सके आप नवामी भाई कभी जकी फसल आप अगेती बुआई कर दी है कटी बिरखा होगी है तो जका किसान भाई बहन है वे आप जकी फसल में निराई गुड़ाई करना
0: जरूरी है
1: बहुत जरूरी है और टाइम सर करते रहे तो जकी आप मिट्टी में खासतौर बिरानी फसल में आप सावणी की फसल में यह ध्यान देवा कभी नमी मनाए जका काम है वे आप टाइम सर करते रहो।
0: और जुलाई का बखत है तो ये मायने कही है कि कम बखत मायने तैयार होने वाली जिकी साग सब्जी है बिजनी भी लगाया जा सके और मुनाफा कमाया जा सके। मोटा मोटी बात करें तो भिंडी है टमाटर है बैंगन है फूल गोभी है का पछे हरी मिर्चा और रोपाई ई बखत में करा जावेला। और बेलिया वाली सब्जियां है तो लौकी है तुरई है करेलो है खीरो है और कद्दू आने क्या मचान विधि से उगाया जा सके। मचान विधि का कारण ये कि अगर मान लो घीओ है जमीन माथे उग जासी लेकिन कीड़ो लगने संभावना है पर मचान माथे लटकाएड़ा उसी बेला

0: तो वो क्या है, लटकसी और लंबो उसी बदवार भी बरसो कीड़ो भी लागे कोनी। बीर सागे सागे बीर मायने क्या है, बाजबाज के बार भाई बता रहा था कि बीर मायने बुराई बुराई करनी है तो जरूरी है पानी निकास व्यवस्था करना अभी जरूरी है, रोग नियंत्रण जो है वो करना जरूरी है, फपूत जनित जिसका रोग है यानी कि आप जड़ा सड़ जावे तो बीरो भी खतरों बढ़े, तो बीरो भी क्या है कि आपने बखत माथे जैविक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए।
1: और डॉक्टर साहब अपना सावणी की फसल में खास तौर से ध्यान देवा तो अपने यो ही ध्यान देना है कि भी निराई गुड़ाई टाइम शुरू करा और जल की निकासी है वह टाइम शुरू होती रहे, जल अपनी खेती बाड़ी की फसल में नहीं रुके।
0: और बकत की बात करिए तो देखो सा बकत हो गया गीतड़ ले रो कांगड़ा प्रजापति का गायड़ो बड़े सो गीत है जीरो सुनो सा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: हाँ भाई, ये बार आप संदेश सुने और संदेश से पहला मीठो सो लोकगीत सुने और अपनी जी की बातें चल रहा है वो खेतीबाड़ी से संबंधित आई। और खेतीबाड़ी में आप देखा कि भाई पानी की जरूरत है वह बहुत ही ज्यादा होया करे, और पानी बिना तो अपनी जी की फसल पाकई को नहीं। और आप देखा कि भाई जो की पानी है फसल नहीं को नहीं, अपने जीवन खातर भी बहुत जरूरी है। जल है तो कल है।
5: देखो सब भाई लोग बात है कि आप कई चीजा जो आप सरकारी नियम बनाए, एक योजना ले रही हर घर जल हर घर नल, और बिरे मजहब घर घर में टोटी लागी है, पानी घर तक पुगड़ लागी है। लेकिन सितार करो वो भगत भी जब लोग बाग किलो किलोमीटर जावता, कोसा कोसा पाड़ा जावता और पानी घड़ाया लेर माथे पर ऊंच आवता, पणिहारी गाता आवता, क्या मतलब बहुत दूरों काम हो। पर आज सरकार जकी योजना बनी है जनहित योजना, बिरे मजहब घर मायने पानी आ रही है। पर आपा ने क्या है कि पानी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना को नहीं। कई भाई क्या दाढ़ी करे तो बीटम पानी में चालू कर, या ब्रश करे तो पानी चालू रखे टोटी और भाई चालती रहे, और भाई ब्रश करता है तो दो मिनट बाद बंद भी कर लो तो वह भी जरूरी है। कई भाई है गाड़ियां धोवे तो भाई टोटी जैन नल आवे और लेर पाइप शुरू हो जाए। कई भाई है नल आवे तो लेर छिड़काव करना बिना वजह गणिया मान छिड़काव करता रहे, तो वो कहीं है पानी रो दुरुपयोग है। तो आपने इस चीजों से बचाव करना है। एक चीज कई बार अपन देखा मार्ग में जाओ तो घड़ी मैंने टोटी लागू अब टपकती रहे या बेहती रहे बिना मतलब कोई सास मारा को नहीं। तो आप कर्तव्य बने, एक अच्छे भारतीय नाते कर्तव्य बने कि आप रुक पड़ा हेठे उतर और भी टोटी ने बंद कर देवा, क्योंकि पूरे जो पानी है वो पूरे विश्व रामायण 1% है। सगला पानी माने फगत 1% पानी है जो मनखारे उपयोग वास्ते उपलब्ध है। ये खातिर पानी का जो संरक्षण है, पानी ने जो परोटन है, वो हर मनुख री हर नागरिक री प्राथमिकता होनी चाहिए।
4: डॉक्टर साहब थे कितनी चौकी जानकारी दी, और आप मेरे सागे सागे किए के जो पानी है मैंने काम तो लेवा ही हाँ थे जो बतायो कभी नल खुलो छोड़ दियो या गाड़ी साफ करी हाँ या फिर आप रसोई घर में जो पानी काम लिया तो मैंने दोबारा भी काम ले इसका जी आप रसोई रो पानी है पेड़ पौधा में काम आई ले इसका, और जो आप कपड़ा धोन रो वॉशिंग मशीन रो जो आजकल आप उपयोग करा करा तो वह जो पानी निकले वह आप गाड़ी धोने काम ले इसका, और गाड़ी जो धो पानी बचे वे आप जो घर बार है वह धोन में काम ले इसका। तो अलग शू आप पानी नहीं बिखेना वही पानी आप काम लेता रहा तो सदुपयोग हो जाए। और खास कर ध्यान देवा कभी जिको बार पानी बचान रखा तरफ बात करिया तो खेत रो पानी खेत रमाई और घर रो पानी घर रमाई बिरखा रमाई संचित करा, और मैंने अच्छे तरीके से आप टंकर रमाई इकट्ठो करा खेत रमाई जो खुड रो पानी है वो खुड रमाई यानी नमी मनाई रखा गहरी जुताई कर वह संचित करा। और
5: अनिल भाई देखो अबारा बात कर रहा था पानी की बात कर रहे हैं, और जहाँ बता रहे हैं कि खेतों पानी खेत में अब सरकारी एक योजना है, मैं बात करी हर घर नल अभी सरकारी योजना है। तो सरकार कई योजनाएं ले रहा है, और सबसे मोटी बात है आपने जगह संदीप कुमार पारीख है अपना भाई जगह ग्रामीण जगत रामायण आप आगे बातें करता रहे हैं। वे क्या है बखत बखत पर कई जगह बारिश में आएड़ा लोग हुए जानकार विषय विशेषज्ञ हुए बासू जानकारी लेता रहे, इन्हें विगत रामायण आप जानकारी ली है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, और जानकारी दे रही है डॉक्टर दीपाली धवल।

0: आप सबने सुनो सर डॉक्टर दीपाली दहिन रो जानकारी संजीव कुमार पारिक द्वारा लियो।
1: आज का किसान आगे बढ़ना चाहता है और हर प्रकार से अपने खेतों से अधिकतम लाभ जो है लेने का प्रयास करता है, लेकिन केवल किसान के भरोसे अगर हम ये समझें कि वो आगे बढ़ेंगे तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक उन तक सरकारी योजनाओं का फायदा न पहुंचाया जाए। और इन योजनाओं को सरकार से किसानों तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार के प्रयास जो है वो वर्तमान समय में किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की कई ऐसी कृषि योजनाएं हैं जिनसे जुड़कर आज का किसान अपने खेतों से न केवल अधिकतम उत्पादन ले सकता है बल्कि अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकता है। तो ये योजनाएं कौन कौन सी हैं और इनसे किसान किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर दीपाली धवन जी को। आप निदेशक हैं प्रसार शिक्षा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों के विकास के लिए उन तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन उन तक सही रूप से वो सरकारी योजनाएं पहुंच सके इसके लिए और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो योजनाएं हैं, और अगर मैं विशेष रूप से आपसे जानना चाहूं भारत सरकार की जो कृषि योजनाएं हैं किसानों के हित में वो कौन कौन सी हैं, उनके विषय में आप थोड़ा सा हमें बताइए।
2: जी हाँ, भारत सरकार की अपन चर्चा करेंगे, केंद्र सरकार से अपन शुरू होते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख है, और इस योजना के तहत जो फायदा किसानों को मिलता है वो है पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता का, और इसके अलावा 2,000 की 3 समान किश्तों को सीधे बैंक खाते में भी हस्तांतरित किए जाने का फायदा इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
1: जी।
2: दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों जैसे फसल क्षति होने पर बीमा सुरक्षा आदि इस तरीके का फायदा किसान को पहुंचाती है। इसी में कम प्रीमियम पर व्यापक फसल बीमा सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। तो ये हुआ हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाइयों को मिलने वाला फायदा। तो अपन ने देखा दो प्रमुख रूप से केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाएं। तीसरी योजना है किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत किसान भाइयों को हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है, और ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुदान भी दिया जाता है। तो ये है हमारी तीसरी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब आती है साहब चौथी योजना, जो हमारे किसान भाइयों के लिए है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके तहत केंद्र सरकार ने फायदा दिया है खेती एवं कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, और समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में अतिरिक्त राहत पर राहत का प्रावधान। तो ये भी हमारी एक प्रमुख कहना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड की एक योजना है जो हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। पांचवी किसान उत्पादक संगठन योजना, ये भी हमारे प्रमुख हम कह सकते हैं फायदे वाली योजना है, जिसके तहत किसानों को संगठित कर सामूहिक खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, बेहतर बाजार एवं उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। और छठी योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जिसके तहत हमारा किसान कृषि आधारित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर सकता है, उन्नयन हेतु सहायता ले सकता है, और पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत पर निर्धारित सीमा तक क्रेडिट अनुदान ले सकता है, प्रशिक्षण ले सकता है, तकनीकी सहायता ले

0: तक। और आखिरी प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसके तहत कृषि कार्य हेतु सोलर पंप स्थापित कर सकता है, उसके लिए वित्तीय सहायता ले सकता है, डीजल और विद्युत लागत में कमी तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते।
1: प्रोफेसर डॉक्टर दीपावली धवन जी, आपने विभिन्न केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में क्रमवार बहुत अच्छे से बताया
0: जी।
1: इनसे किसान किस तरह से जुड़ सकता है, इसके बारे में हम आपसे आगे और बात करेंगे
0: जी।
1: लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में ये जो विभिन्न योजनाएं हैं,
0: हाँ जी,
1: तो क्या राजस्थान सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनसे किसान सीधे जुड़कर अपने खेतों में फायदा ले सकते हैं?
0: जी, राजस्थान सरकार भी पीछे नहीं है। राजस्थान सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, शून्य ब्याज फसली ऋण योजना, इसके अलावा कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पर राज्य अनुदान योजना और विभिन्न कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं के अंतर्गत उपकरणों एवं तकनीकों पर सहायता योजना।
1: जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं और कौन कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं जिनसे जुड़कर आज का किसान जो है वो अधिकतम लाभ जो है वो ले सकता है। लेकिन मैडम, हम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे, अगर किसान इन योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो उससे पहले वो ये देखना चाहता है कि उसको लाभ क्या है, तो बीकानेर के किसानों के लिए विशेष संदर्भ में मैं बात करूं तो उनको क्या विशेष लाभ जो है जो इन योजनाओं से जुड़ने पर उनको मिलते हैं?
0: जी, अगर हम बीकानेर के किसानों के लिए बात करें तो उनके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है वो विशेष रूप से लाभकारी है, सोलर पंप स्थापना जो है वो लाभकारी है, फसल बीमा जो है वो लाभकारी है, किसान क्रेडिट कार्ड लाभकारी है, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लाभकारी है, FPO के माध्यम से सामूहिक विपणन योजना जो है वो बहुत लाभकारी है।
1: जी, ये जो सभी योजनाएं हैं वो ऐसी योजनाएं हैं जिसमें किसान को प्रत्यक्ष तौर पर अपना लाभ जो है वो दिखाई देता है। जैसे आपने बताया सोलर पंप की स्थापना करनी हो या फिर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की बात हो
0: जी।
1: लेकिन अब प्रश्न जो है वो ये उठता है कि अगर किसान इन योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो वो क्या करे, उसको आवेदन जो है वो कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए?
0: जी हाँ, आपका सवाल बहुत सटीक और बहुत सही है कि ये सब तो है, किसान को भी लगता है कि ये सब सरकार ने हमारे लिए बहुत फायदा किया है, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ, करूँ क्या, कैसे करूँ, तो ये बताना बहुत आवश्यक है। आवेदन कहाँ करें, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारा किसान भाई राज किसान पोर्टल पर जाए या फिर ई मित्रा केंद्रों पर जाए या फिर कृषि विभाग के जिला एवं पंचायत समिति कार्यालय पर जाए या फिर संबंधित बैंक जहां पर किसान क्रेडिट कार्ड है जहां जाता है वो वहां जाए या फिर उद्यानिकी विभाग जहां पर सूक्ष्म सिंचाई एवं उद्यानिकी योजनाएं चलती है वहां जाए, तो वहां से उसका आवेदन आसानी से हो सकता है।
1: जी, ये बात तो आपने बताई, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान हमारे जो गांव के हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको एक ही बार में सारी जो सहूलियत है वो मिल जाए, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, तो इसके लिए दस्तावेज कौन कौन से ले जाने होते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने ये सही सवाल किया कि किसान चला तो जाता है पर जब उसको दस्तावेज की बारी आती है तो कई सारे कागजों की उसको जरूरत पड़ती है, तो उसको लगता है कि कौन कौन से कागज मुझे लाने चाहिए, बार बार आना जाना, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो उसको जन आधार या फिर आधार कार्ड इसकी जरूरत पड़ती है, जन आधार से लिंक बैंक खाते की जरूरत पड़ती है, जमाबंदी या भूमि रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट आकार का फोटो भी उसको चाहिए होता है और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी चाहिए होते हैं जो कि उसको योजना के अनुसार ले जाने पड़ते हैं, तो कई सारे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
1: इसके अलावा किसान को जागरूक करने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं?
0: हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रत्येक योजना की पात्रता, अनुदान की दर एवं आवेदन की प्रक्रिया समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संशोधित की जाती है, अतः आवेदन से पूर्व संबंधित विभाग या राज किसान पोर्टल पर नवीनतम दिशा निर्देश देख लेने चाहिए किसान को जब जब वो वहाँ

0: जाए, क्योंकि ये ना सोचे कि मेरे को तो महीने भर पहले किसी ने ऐसा बता दिया था, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है कि हर दिन हर क्षण कुछ नई जानकारी किसान को मिलती है, तो जाने से पहले वो जरूर अपने आसपास या अपने मोबाइल में या अपने साथियों से या कृषि विज्ञान केंद्र में कहीं ना कहीं जाके जाने से पहले पूछ ले कि भाई मैं इतनी दूर जा रहा हूँ तो कोई और कागज कमी तो नहीं है, ताकि उसको चक्कर ना लगाने पड़े और अपने दस्तावेज पूरे करके ही अगली जगह जाए, ताकि उसको दिक्कत ना आए।
1: जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका किसानों से सीधा जुड़ाव रहा है
0: जी,
1: और जब हम किसानों से इंटरेक्शन करते हैं
0: जी,
1: और उनको कई बार ऑन फॉर्म या ऑफ फॉर्म जो डेमोन्स्ट्रेशन हैं वो दिखाते हैं, तो आपने क्या अनुभव किया है, किसानों की क्या राय रहती है इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद?
0: किसानों को अच्छा लगता है और उनको हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि वो आज का किसान देखिए नई नई चीजें ढूंढना चाहता है, उसको लगता है कि मैं भी जिस तरीके से जमाना आगे बढ़ रहा है उसे लगता है कि मैं भी कम समय में अच्छा अपना खेती करूं, अच्छी तरह से कम लागत में अच्छे से अच्छा कमाऊं। तो किसान भी जिस तरह से जमाना आगे बढ़ रहा है, किसान भी हमारा चाहता है कि मैं अच्छी खेती करूं, अच्छा कमाऊं।
1: जी, तो केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख कृषि योजनाएं कौन कौन सी हैं, इस विषय पर जानकारी दे रही थी प्रसार शिक्षा निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर दीपाली धवन जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में पधारी और हमारे किसान बहनों और भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सा अबार आप जानकारी सुन रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारी योजनाएं, जानकारी दे रही है डॉक्टर दीपाली धवन और आपसे जानकारी ले दिया था संदीप कुमार पारिख।
3: देखो, आप इतनी चौकी जानकारी सुनी और आप किसान भाई बहन भी सुन लग रहे हैं, तो आप धन्यवाद रूप में सुनाओ मिठो सो लोकगीत।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं, 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: देखो अनिल भाई, कि आपना जिका कई भाई बंधु है, काम धंधा करे, किसान भाई है, बेबी काम धंधा करे, पर एक उम्र आखिरी पड़ाव आवे जन बेर इच्छा आवे के बैठा बैठा काम तो खैर करता ही रहवा, लेकिन की न की पैसा जिका है हाथ रे मायने आवता रहे। कई जगह श्रम करे लोग, यानी कि जिका कारीगर है, मजदूर है, या सुथारी रो काम करे, या और भी कोई दूजा काम करे, यानि कि मजदूर वर्ग है, बे सकलारी इच्छा आ रहे कि एक उम्र आखिरी पड़ाव रहे मायने अगर दो पैसा हाथ रहे मायने आवता रहे तो जीवन थोड़ो सोरो चाल जावे।
2: और ऐ सरू देखो, अपनी जी की भारत सरकार है वह योजना ले रहा रही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और ऐ योजना में जिका मिनख असंगठित क्षेत्र में काम करे, वह में की है कि आपरी जी की उम्र है 60 वर्ष होने के बाद में वे हर महीने 3,000 न्यूनतम पेंशन गारंटी तहत प्राप्त कर सके। अपन ए खातर किए कि उन्होंने 18 साल से लेर 40 साल रोज को मिनख है वो यह योजना से जुड़ सके, और जो कि न्यूनतम राशि है वह एमें जमा करानी पड़े। और ए खातर किए कि आधार कार्ड और जो को बचत खाता है वो होना जरूरी है।
1: देखो सर, ये बात सबसे मोटी बात है कि आज की जनधन जी की योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये योजना के तहत अगर आप बात करा तो कम से कम जो है प्रति माह 55-200 रुपये तई योगदान है जो खुद ने करना पड़ सी, बैंक रमान बहुत जमा होते रहे। और जहाँ अनिल भाई बात करी थी कि आयु जी की है 1840 वर्ष से बिचाड़ होने चाहिए, 40 ऊपर भी योजना से कोई नहीं जुड़ सके, लेकिन 40 पहला पहला तो आयु रे हिसाब से अंशदान है बिना लाभार्थी ने करना पड़ से। इधर बाकी रो जो अंश है वो सरकार खुद आप तरफ से में जोड़ सी। और आवेदन प्रक्रिया अगर करनी है तो पंजीकरण खातिर आप आ रहे नज़दीक रो जो कॉमन सर्विस सेंटर है बड़े जाओ, आवेदन करो, आधार कार्ड है, बचत बैंक खाता है वे जमा करो और करो। एक चीज़ और, यदि लाभार्थी 60 वर्ष से आयु रे पछे मान लो कोई कारणवश मृत्यु हो जावे तो उनका जो जीवन साथी हुए बिना पेंशन रूप में 50% यानी 1500 रुपये प्रति माह, यानी लाभार्थी 3000 मिलती और इन्हें 1500 रुपये मिलेगी। आ बड़ी बात इरमा ने दी है।
2: तो आपा सगला मिनक जानकारी काम में लेवा, और जो अपना भाई बंधु है उन्होंने भी बतावा ताकि वे भी यह योजना जुड़ ए योजना रो फायदा उठा सके, और बुढ़ापे रमाई आपा कह सक वृद्धावस्था में आप रो जो को हाथ में पीस है वो रख सके।
1: और दूसरी बात एक और है कि परंपरागत खेल जिकी बातें होया करे कि अब बुढ़ापो तो छाई जावे तो कई लोग भाई ने देखा घरे तिग्गो रमे, कई क्या है कि चौकसर रमे के चौपट रमे, तो घर में बैठा जिसका डोकरा है या डोकरियाँ हैं बे क्या है कि खेलता रहे। लेकिन युवा अवस्था रहे मायने कहीं हुए कि जिका भी टाबर टिंगर है बे सगला क्या है पारंपरिक जिका खेल हुए कबड्डी हुए, खो खो हुए, गुल्ली डंडा हुए, पैर दूज हुए, इकड़ बिकड़ हुए, या फिर अपारे जगह मारदड़ी हुए, या दूसरा कई खेल ऐसा है बे खेल खेलता रहे।
2: और इन खेल सो की है कि आपने जो कि शरीर मांसपेशियां रो

0: सो है और ऐसो की है कि आपनो शरीर जको मजबूत बनाए और एर सागे सागे के आपनी शारीरिक बनावट है वह भी अच्छी बने और मजबूत बने और मैं खतर की है कि आप शारीरिक संतुलन बनाने में भी सहयोग रहे आप ज्यादा से ज्यादा की है कि जिसका परंपरागत खेल है उन्होंने अपनावा और अपने टाबरिया ने जिसका खेलन कूदन ने इकट्ठा कर बारह खुले मैदान में खिलावा तो ताकि उन्हारो शारीरिक विकास भी हो और वे सागे सागे के मानसिक विकास भी उन्हारो अच्छे तरीके से हो सके और वे लंबे टाइम तक स्वस्थ रहता है आप जीवन जीवे तो ए खतर के अपने अपने टबरिया ने शुरू से ही परंपरागत खेला करनी आप समझाना और उन्होंने खिलानो बहुत जरूरी है
1: और अब सिंजारी बेड़ा हो गई है अब चलता चलता सुना और एक हरजत सोही देरी तो गायड़ो

अभी ग्रांड भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। इस समय संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं शशिकला केकनी के स्वर में ये भजन।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8 बजने को है संसद समीक्षा, यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से होगा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया एआई वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को एआई सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत आईटीआई पीएमएसएटीयू योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा एआई विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सीबीएसई भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में एआई उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक जेडीडी ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ. सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जी राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा, कोंकल संगमा, डॉ. सतीश पूनिया और

आशिक बड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मानसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में चार दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को उसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय

0: सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:15 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है अदालत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। स्वर मुकेश का है, फिल्म का नाम

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आंधी का ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है।
1: कि वो किसी और सदी की बात थी,
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारे शॉल कहाँ?
1: भूल गई,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं भूंगर खां के स्वर में ये लोक भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सोनी देवी के स्वर में ये लोक भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अंत में सुनते हैं सरिता गोस्वामी के स्वर में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब समाचार होंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने

जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फ्रेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया।

0: हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति के मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और राजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात

0: हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55,49,00,000 उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314,00,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर की ढोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में। ये सबसे पहले सुनते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है तेरे नाम।

आपने सुनी उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गीत, और फिल्म का नाम था गदर। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडेकर की आवाज में संतोष आनंद का लिखा गीत। फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

सुरेश वाडेकर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। पुराने फिल्मों से आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दिल लगी से। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत बद किया नौशाद ने और आवाज है सुरैया की।

बात एक रात की। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज़ हेमंत कुमार की थी। आइए सुनते हैं अनवर की आवाज़ में अगला गीत। फिल्म का नाम है जनता हवलदार।

ये आवाज़ थी मुबारक बेगम की। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। गीत शैलेंद्र ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने और फिल्म का नाम है उसने कहा।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बजने को है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा।
1: प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट।

0: You will now listen to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today.
1: Maniniya Sabha Sado, Maniniya Adhyaksh Ji,
2: Maniniya Sadasyagan, Atyant Dukh Ke Saath, Mujhe Sabha Ko Apne Chhe Poor Sathiyon Aon Qatar Ke Poor Amir Father अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एनाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक

0: 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न मान्य सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर 1,
2: प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
3: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
4: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राज प्रण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी को, मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि युवा सब से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए

0: सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं और उसमें से 3,74,000 मैन्युस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
1: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, मैं आपको प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:13 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सांगीदान दमामी से ये लोकगीत।

अभी आप लोक संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए आप सुनते हैं सुगम संगीत के अंतर्गत गैर फिल्मी गजलें। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं नेहा हर्ष की आवाज में ये गजल।

0: युगांतर सिंदूर की गाय इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित

0: सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, Question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
4: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruption,